नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। अज दिन मंगलवार शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 5 तारीख तदनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी अज 26 तरीके इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सैकेंड होए ने। साढ़े अज दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करदे हां।

जी जिंदगी दे विच राह नहीं दिखाई दे रहा तो जरूरी नहीं है कि राह है ही नहीं है। बस कोई औखा वेला हुंदा है कि जिहदे विच असी राह देख नहीं पाते, किसी दुचित्ती दे विच मन साड़ी सोच साड़ी समझ अटकी हुई हुंदी है। लेकिन जे असी अपने परमात्मा ते

परमात्मा दी मेहर दे नाल जदों असीं इस नूं याद रखदे हाँ मन दे विच हमेशा हर वेले उसदा नाम सिमरन करदे हाँ तां परमात्मा हौली हौली साडी धुर अंदर उसदा वास हो जांदा है ते दुनिया दा कोई भी दुख फिर साडे मन नूं विचलित नहीं कर सकता।

कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। एको परमात्मा ही है जो साड़ी दिल दी असली गल जो अंदर चल रही होंदी है, जो उधेड़ बुन या जो भी तूफान साड़े मन दे विच चल रहे होंदे ने उस सारा कुछ जानता है। ते चंगा चाहे माड़ा इंसान जिद्दां दा मर्जी होवे लेकिन उसकी पीड़ चंगी तरह जानता है वह परमात्मा। वो साड़े सारे दुख पछाणदा है किहड़े असली ने ते किहड़े असी ओदे मन नूं लाए हुए ने।

आकाशवाणी एफएम रेनबो ते स्वेर दे 7 बज रहे ने ते वेला हो गया एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा जो कि तुसी सुनोगे बिल्कुल लाइव। पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे साल 2026 लई 66 उगियां शख्सियतां नूं पद्म पुरस्कार प्रदान कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो सिक्किम दे 3 दिना दौरे ते होणगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रीख्या विच वार वार आ रहियां खामियां ते चिंता प्रकट करदिआं कहा है कि यह दुख दी गल है कि नैशनल टैसटिंग एजेंसी ने पिछले पेपर लीक तो कोई सबक नहीं सीख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोरंजन अते मेहमान नवाजी संस्थावां विच बाल मजदूरी ते सख्त पाबंदी लगाउण दी मंग करन वाली एक जनहित पटीशन ते केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी कीता है।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवी दिल्ली विच जापान दे विदेश मंत्री मोटेगी तोशी मित्सू नाल गलबात कीती। सरकार देश विच पेट्रोलियम उत्पादां दी सुचारू सप्लाई यकीनी बनाउण लई हर संभव कोशिश कर रही है। पंजाब विच नगर निगमां, नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं चोणां लई अज वोटां पै रहीआं ने। सड़क आवाजाई अते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश विच 1947 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय शाहराह प्रोजेक्टां दी प्रगति दी समीक्षा कीती। पंजाब सरकार वल्लों ईद उल जुहा बकरीद दे संबंध विच सूबे दे समूह सरकारी दफ्तरां, बोर्डां, कारपोरेशनां अते सरकारी विद्यक अदारियां विच 28 मई नूं गजटड छुट्टी दा ऐलान। अते मौसम विभाग ने अगले दो दिनां दौरान पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ विच लू चलण दी पेशगोई कीती। इस अन हुण तक दे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस, अगला प्रोग्राम बस हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार ते बने रहो एफएम रेनबो दे नाल।

musically yours and only yours for your entertainment and for your good start of morning. Yani ki tohade layi tohade entertainment layi aur tohadi khoobsurat sveer di soni te khoobsurat shuruaat layi FM Rainbow. ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो, जब भी खोलो आप सब अपनी पलकें, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो, क्योंकि मैं जानिया के थोड़ा हर दिन बहुत ही खूबसूरत ते ब्यूटीफुल होवे। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिफ्रेशिंग एंड पॉजिटिव ट्यूजडे मॉर्निंग। सो मुबारका जी, बड़ी प्यारी जी सवेर दी है तुहानू सारयां नू। ट्यून किया होया तुसी तुहाडा ते मेरा फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन FM रेनबो जलंधर 102.7 103.6 और इसी फ्रिक्वेंसी के जरिए अमृतसर और अमृतसर वाली फ्रिक्वेंसी तो सरहद पार दे प्यारे प्यारे लिसनर्स सानू ट्यून करते हैं, यानी कि आकाशवाणी FM रेनबो जलंधर नू। और जो दोस्त सानू न्यूज़ ऑन EIR ऐप दे जरिए ट्यून करके बैठे ने, तो हाड़ा सारे दा दिल तो शुक्रिया कर दिया जी। हाँ जी, देशों विदेशों के कोने कोने च मैनू पता फिलहाल तुसी सुन रहे हो तुहाड़ा FM रेनबो जलंधर दा स्टेशन। और फिलहाल जिन्होंने पहचान लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं पछाणिया मैं भी तो दस दवा भी मैं है कौन। अच्छा, पछाण लिया ठीक है मैं सारिया गल्ला समझ गई। अच्छा, म्यूजिक तो पछाण जाते हो, स्याणे तो बहुत हाँ तुसी, बस इदी तो साथ चलता होंगे। कभी मैं स्याणिया गल्ला करती, कभी तुसी, कभी मैं चलिया गल्ला कर दिंदी हाँ तो तुसी समझ जाते हो, तो कभी तुसी मजाक करते हो तो मैं समझ जाती हूँ तुहाड़ियां स्याणियां गल्लां ते मेरियां स्याणियां गल्लां दा ये सफर चलता है जी साडा FM रेनबो ते। सो फिलहाल माइक दे इस पार बैठी हुई हाँ मैं, ते उस पार रेडियो ते मैनू सुन रहे हो तुसी, यानी कि तुहाड़ी अपनी प्यारी जी दोस्त RJ पूजा टोहानी नू। और फिलहाल टाइम हो चुका है 7:05 और पूरे 40 सेकेंड, यानी कि टाइम हो गया है तुहाड़े फेवरेट वाले डेली वाले इनफॉरमेशन ते एंटरटेनमेंट दी डोज नाल सजे हुए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा, जिस विच इनफॉरमेशन एंटरटेनमेंट दी डोज ते हुंदी ही है, पर नाल दी नाल मेरियां गल्लां बातां दा सिलसिला और अच्छे अच्छे म्यूजिक दा गाने दा सिलसिला चलदा है लगातार गल्लां ते गीत नाल दी नाल। तो 8:30 बजे तक गुड मॉर्निंग जलंधर, 8:30 बजे खबरां, 10 मिनट दे ले, और जिवें 8:40 होंगे तुहाड़ी अड्डी नूं थोड़ा जिहा पेन देण दे ले, ते यानी कि थोड़ा जिहा तुहानूं कष्ट देण दे ले, मैं प्ले करूँगी इदां दे पंजाबी बीट सोंग्स बैक टू बैक कि तुसीं अपना सारा जिहड़ा वर्कआउट वाला सैशन है उहनां 20 मिंटां दे विच पूरा कर सकदे हो सैगमेंट अड्डी टप्पा दे विच। और 9 बजे मेरे तो न्यूज़ हेडलाइंस सुनोगे।

लेकिन हर सफर इतना सौखा थोड़ी हुंदा है जिन्ना लगता है। और इस जगह नूं भी बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पिया सी, सौखा थोड़ी सी। जो लग रहा सी कि हाँ जी हुण सारा कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल वधिया मेहनत कर रहा हाँ और इस चीज़ नूं अचीव किया जा सकता है 100 मीटर रिकॉर्ड नूं, लेकिन कहिंदे ना कि जदों लगे कि हुण सब कुछ ठीक है उदों कई बारी या तो नज़र लग जाती है तो या फिर कुछ ना कुछ हुंदा है जरूर, शायद परमात्मा चेक कर रहा हुंदा कि तुहाडे अंदर वो जनून वो ताकत है कि वो नज़र है उस सुपने देखण ते पूरे करन दी, वो अग है तुहाडे अंदर। तो गुरिंदर वीर सिंह दे नाल भी इदां ही होया, उन्हां दी लाइफ दा डार्केस्ट फेस उदों आया जदों उन्हां दे स्टमक अल्सर्स हो गए, एकदम उन्हां दा जिहड़ा भार है वह घट गया, रैपिड वेट लॉस और इस तों बाद हिप फ्लैक्सर इंजरी हो गई। गलत मसाज दे नाल शायद उन्होंने कुछ स्ट्रेन वगैरह ज़्यादा वध गए, साइनस की सर्जरी हुई, बहुत बुरे तरीके दे नाल बहुत सारिया रुकावटा इको वार उन्होंने आईया और बुरे तरीके नाल घिर गए मुसीबतों के विच। एट अ टाइम बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे पेनफुल सिचुएशनज उन्होंने सामना करना पिया। और इस मुंडे नूं जिहनूं हुण इंडिया दा फास्टेस्ट मैन अलाइव किया जांदा है, इन्हां नूं ये लगन लग गया कि शायद ये जिहड़ा मेरा करियर है या जिहड़ा मैं सपना है मेरे हत्थां चों फिसल रहा है। बाकियां नूं इदां लगा, एक टाइम ते इदां आया कि इन्हां दे पिता ने भी कहा कि बस तूं भजना छड़ दे, डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी कि हुण नहीं, क्योंकि पेट दे जिहड़े अल्सर्स है वो बहुत ज़्यादा इन्हां नूं परेशान कर रहे सी। लेकिन गुरिंदर वीर सिंह ने अपनी ट्रेनिंग नहीं छड़ी, उन्होंने अपने आप दे नाल वादा किया कि नहीं जो सपना देखे उसनु पूरा भी करांगा, और बस यही डेडिकेशन ने उन्होंने हिम्मत दी रीस्टार्टिंग दी। एंड देन केम रांची, और रांची का वो मुकाबला जिथे नैशनल सीनियर एथलैटिक्स फेडरेशन का मुकाबला हो रहा सी 100 मीटर दे विच, बस इन्हां दा टाइम आया और इन्हां ने तोड़ना सी 10-10 सेकंड दे बैरियर नूं। फाइनली गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड दे विच दुनिया नूं दिखा दिता कि सिर्फ 10 सेकंड ही ते नहीं, सपना है, देखिया है, हिम्मत करो, मेहनत करो तो कुछ भी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। और ऐदा का ही सपना एक होर मुंडे ने पूरा किया है, इकली नहीं, नहीं क्योंकि

0: सुजी वेलकम बैक वंस अगेन। और फिलहाल टाइम हो गया है एक छोटे जे ब्रेक दा, क्योंकि ब्रेक जिंदगी दे विच कई बारी जरूरी हो जाती है, साडे लई भी ते मशीन दे लई भी, है ना। ते मशीन नू भी आपां नाल दी नाल ब्रेक दवा देनी है ताकि मशीन साडे नाल गुस्से ना हो जाए, और गुस्से हो के ते फिर काम चलदा नहीं है ना किसी दा। आपां गुस्से होण नहीं देना। एक छोटे जे ब्रेक तो बाद गल्लां बातां दा सिलसिला जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच।
1: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तो अड़ा कर

0: और मैनूं लगदा कि कुछ ऐदां दे दिमाग दे विच विचार कि मैनूं कुछ लेना देना नहीं है, दुनिया की कहंदी है, लेकिन मैं कुछ काम करना है और वखरा करना है। शायद ये थॉट साढ़े अज दे मेहमान ने जो उन्होंने दिल और दिमाग दे विच भी आए होणगे, और इसी वजह करके उन्होंने अपना जिहड़ा विशा है कुछ ऐदां दा अलहदा चुनिया कि पहले मैं तुहानूं विशा दस दिंदी हां ते फिर नहीं, पहला मैं तुहानूं दसूंगी साढ़े अज दे खास मेहमान उन्हां दा नाम की है। सो गल करांगे अज डॉक्टर गुरविंदर सिंह कोचर जी दे नाल, जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच प्रिंसिपल वी ने और नाल ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट वी ने, और इन्हां नाल असीं गल करांगे अज एनहैंस्ड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर यूजिंग अ सिनर्जी ऑफ माइक्रो एल्गे एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट विदाउट एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन। सो ये है जी अज का टॉपिक। लेकिन सब तो पहला स्वागत करते हैं साढ़े अज के खास मेहमान डॉक्टर गुरविंदर सिंह कोचर जी का। हेलो,
1: बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैडम
0: जी। सर गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत स्वागत कर रही है गुड मॉर्निंग जलंधर के और एफ एम रेनबो के इस वेड़े के। सर ये जिहड़ा मैं लंबा जिहा टॉपिक बोल दिता है, मतलब मैनूं इदां लगदा होना कि जदों मैं बोल रही सी लिसनर्स कहिंदे होणे कि ओके पहले मैडम खत्म कर लवे फिर आपां सोचांगे कि की बोल के गए ने। सो मैं सब तो पहले तुहाडे तों इही जानना चाहूंगी कि ये जिहड़ा अज दा साडा टॉपिक है जिस बारे असीं डिस्कशन करन जा रहे हैं कि माइक्रो एल्गी यानी कि सूखम काय, ये इहदा सानूं थोड़ा जिहा आसानी और सौखी भाषा दे विच दस दिओ साडे लिसनर्स नूं कि ये की टॉपिक है।
1: ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਏ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ

0: सर,
1: थैंक यू मैम,
0: शुक्रिया
1: सेम टू यू जी,
0: जी।
1: थैंक यू।
0: और गल कर रहे थे आप डॉक्टर गुरविंदर सिंह कोचर जी के न, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट और प्रिंसिपल ने, और इन्होंने बहुत वधिया उपराला किया और बहुत वधिया तरीके दे नाल इन्होंने अज सानू दस्या कि किस प्रोजेक्ट दे नाल जुड़ के इन्होंने की रिसर्च वर्क किया। माइक्रो एलगे ते सूखम जीवां दे सहयोग दे नाल गंदे पानी दी बेहतर सफाई ते बिना वादू ऊर्जा खर्च की ते माइक्रो बायोफ्यूल उत्पादन, इस विषय ते असी गलबात की। और उम्मीद करते हैं कि बहुत ध्यान दे नाल तुसी सुने होगा, समझने की कोशिश की होएगी कि अज का टॉपिक की सी। सो फिलहाल जो पानी की गल हुई है, पानी की सफाई की गल हुई है, तो मैं लगता है कि गीत भी जरूर सुनना बनता है। पूजा तोहानी तुहाड़े नाल एफएम रेनबो ते। गुड मॉर्निंग जलंधर।

मैं भी हाँ और तुसी भी हाँ, आप सारे इतने इकट्ठे ही हाँ और ट्यून किया होया जी तुसी एफएम रेनबो नू। और फिलहाल टाइम है जी 8:24 और पूरे पूरे सेकंड कदी नहीं होंगे, टाइम बहुत जल्दी भजदा। तो उन्होंने लगा मैं कहूँगी पूरे 6 सेकंड कह तो दूंगी, बोलते बोलते तो 7 हो जाने ने। हाँ और देखो गल्लां करदे करदे 1.5 घंटा किवें बीत गया, पता कितने लग गया है। और हुण जल्दी दे नाल मैनू लगदा कि सारी गल्लां आपां कर लईआं ना, ते हुण टाइम है जल्दी दे नाल एक क्विक रैसिपी तुहानू देण दा। सो अज मैं तुहानू दसूंगी कि उह कीड़ी रैसिपी है जिस दे नाल असी गर्मियां दे विच, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना गर्मी भी पैनी है और कुछ ना कुछ बंदे नू हो ही जांदा है ना, और असी की जिहड़े एंटीबायोटिक लै लैने साडे गट दे गुड बैक्टीरियाज नू खराब कर देंदा। सो गुड बैक्टीरिया खराब ना होण, गट दे विच सारे अच्छे अच्छे बैक्टीरिया जल्दी जल्दी वापस आ जाण, उस दे लई गट हीलिंग दे लई आपां अज बनावांगे फरमेंटेड राइस कांजी। चौलां दी कांजी बनदी है और डॉक्टर्स भी इसनू बहुत एडवाइस करदे ने, क्योंकि इस साडे आंत दे लई बहुत ठंडक वाली भी होंदी है और हैल्दी भी होंदी है। सो करना की है, वैसे अपने घर दे विच अगर गर्मियों के ज़्यादा होंगे ही है ना जो बॉयल्ड राइस होंगे, बॉयल्ड बने हुए चावल लेने ने तुसी सॉफ्ट होण है ना थोड़े जे, अद्धा कप तुसी चावल ले सकते हो, अद्धा कप चावल दे विच 1.5 कप तुसी पानी का पा देना है, फिल्टर्ड वाटर पाना है और रूम टेंपरेचर वाला पानी, गर्म ना होवे ठंडा ना होवे। उस दे विच इस थोड़ा जा सेंधा नमक, नमक पा सकते हो पिंच, ज़्यादा नहीं पाना थोड़ा जा पाना, वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन पा सकते हो स्वाद लई। और उस तो बाद इसनू की करना है तुसी, इस दे विच थोड़ा जा बटर मिल्क यानी कि लस्सी भी पा सकते हो और दूसरी ऑप्शन है दही दी, इन्हें दोनों विच कोई भी चीज़ एक पा सकते हो। और उस तो बाद इन्हें मिक्स करके रात भर रहन दियो, तो सवेरे की करना है तुसी थोड़ा जा मैश कर लेना है, मतलब इसनू मिक्स जा कर लेना है, मैश कर लेना है, चम्मच दे नाल भी कर सकते हो अगर मैश करन वाला इंस्ट्रूमेंट हैगा है तुहाडे घर ते उसनू भी यूज़ कर सकते हो। फिर उस तो बाद इसनू मतलब इसनू भिगोना कादे विच है तुसी, मेरी कोशिश ये होंगी है कि असी या तो जिहड़ा कच का कोई बर्तन है वो या फिर मिट्टी का जिहड़ा भांडा घर दे विच उहदे विच ही इसनू पाउणा है, इस दे विच थोड़ा जिहा पानी पा देना है एंड दैन फरमेंट होने के लिए इसनू रात भर असी रख सकते हैं, रात भर रहन दिता इसनू फरमेंट होने के लिए, मतलब रात नू रख दिता 10-12 घंटे ये फरमेंट होया रूम टैंपरेचर ते, फ्रिज च नहीं रखना। फिर उस तो बाद सवेरे की करना है, स्वाद भी तो जरूरी है, स्वाद तो बिना कोई चीज़ क्यों खाऊगा, मैं नहीं खाती। सवेरे तुसी की करना है, घ्यो लेना है देसी घ्यो या फिर दूसरी ऑप्शन है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल जिहड़ा खाण वाला होंदा एडिबल, इहदे विच तुसी थोड़ा जिहा जीरा पाउणा है, मस्टर्ड सीड्स सरों के जिहड़े दाने होंदे ने, थोड़ी जी राई पिंच पिंच ऑफ हल जी हिंग है वह पा देनी है तुसी। फिर उस तो बाद थोड़े जी कड़ी पत्ते भी पा सकते हो, 5-7 कप पा लियो, वैसे मैंने उन्हें टेस्ट अच्छा लगता है, और बिल्कुल ग्रेट किया हुआ कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा जा अदरक तड़का लगाया। और एक चीज़ होर कर सकते हो, ये सेसमे सीड्स यानी कि तिल भी पा सकते हो, तिल नहीं होंगे तिल वाइट वाले या काले वाले, जिहड़े मर्जी पा लो दोनों भी पा सकते हो, खुश रहो बस। पाया मिक्स किया

मतलब इस तड़के नू तड़का लगाया और जदों अच्छी तरह तुहानू लगे कि हाँ जी तड़का लग गया, मिर्च नहीं पाउणी, लाल बिल्कुल भी ना, हरी क्यों एवें, है ना, गर्मी दे विच ज़्यादा तिखा तिखा खाना है। बस फिर इसनों अपनी जिहड़ी फरमेंट की हुई कांजी रखी है, यानी कि चौलां दा ते लस्सी दा या दही दा ते पानी दा जिहड़ा मिक्सचर जिहा है उस विच पाओ, मज़े करो और मैनू याद करो, मतलब मैनू याद करो ते नाल दे नाल मैनू दसो किदां दी तुहानू लगी ये राइस कांजी। डाइजेस्टिव सिस्टम नू बहुत ही ठंडा करेगी और सुकून देगी, मतलब जिहड़ी पेट दी अग्नि है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, उसनू घटाएगी और गट फ्लोरा नू वधाएगी, अच्छे बैक्टीरिया यानी कि साड़ी आंत दे जिहड़े उसनू वधाएगी, मजे करो। और फिलहाल प्रोग्राम इत्थे ही वाइंड अप कर रही हैं, जा के तेरे 8:30 बजे खबरां सुनोगे तुसीं। ते फिलहाल तुहाडे लई जांदे जांदे मैं प्ले करन जा रही हाँ लास्ट गीत, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस ट्रैक।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स. और देखो जी, तुहाड़े लई हुण वापस आ गए हैं फिर तो. और टाइम ये कह रहा है कि हुण टाइम हो गया है तुहाडे एंटरटेनमेंट दे नाल नाल थोड़ी जी एक्सरसाइज करवाउण दा, क्योंकि सैगमेंट शुरू करन जा रही है जी अड्डी टप्पा, जिस विच मेरी कोशिश यही होएगी कि इदां दे गाने तुहानू सुनावा कि तुसी नचण तो अपने आप नू रोक ना पाओ, ता कि तुहाडा वर्कआउट सैशन इस 20 मिनट दे सैगमेंट दे विच कंप्लीट हो जावे. सो आरजे पूजा टोहानी यानी कि मैं हुण तुहानू बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बैक टू बैक पंजाबी बीट सॉन्ग्स इंजॉय करूंगी. और हियर कम्स द फर्स्ट ट्रैक.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है।

0: निकल बस। सपोज मैं तेरे नाल पंजाब चली जावा,
1: हैं?
0: मैं कित्थे लेके जावेंगा?
1: महल च।
0: ओ, तेरे कोल भी महल हैगा?
1: इदू बड़ा महल।
0: अच्छा।
2: वैसे मैं दो कमरे छते हैं, बाकी खुला छड्डे।
3: एक तां मैनू नींद नी आउंदी रहिंदी थोड़ी याद सताउंदी।
0: तुझे कोई कुड़ी पसंद आ गई?

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स, और बस इसी वजह करके तो हाड़ी ली नवे नवे टाइम ते अलग अलग टाइम ते अलग अलग प्रोग्रामा दे नाल तुहाडे एंटरटेनमेंट लई हमेशा त्यार बर त्यार रहिंदा जी एफएम रेनबो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी

पॉजिटिव हैप्पी एंड हेल्दी वाली ट्यूसडे मॉर्निंग तुहानू सबनू वेलकम बैक और ट्यून की तरह जी तुसी एफएम रेन बनो 102.7 ते 103.6 से और नाल दी नाल यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी दे 103.6 दे जरिए अमृतसर ही नहीं सरहद पार तो भी प्यारे प्यारे लिसनर्स सानू जोड़दे ने तो हांडा भी खास ते प्यार भरे स्वागत कर दिया जी और इस तो अलावा न्यूज ऑन AIR दे जरिए देशों विदेशों के कोने कोनिया दे विच जुड़दे ने साडे नाल दिल तो पंजाबी वाले लिसनर्स क्योंकि प्रोग्राम है जी दिल अपना पंजाबी शुरू करन जा रही हां 9:03 हो चुके ने और मैसेजेस आ रहे ने मैसेजेस मतलब अमेरिका तो भी आ गए ने मेरे जेडे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैगे ने उत्थे रहंदे और ते नाल दी नाल बई फैमिली मेंबर्स भी ते हुंदे ने ना जो कदे मिस नहीं करदे तुहाडा प्रोग्राम सो अमेरिका कैनेडा दे लिसनर्स ते पहुंच चुके ने अपनी दस्तक दे चुके ने ते तुसी तुहानू कादा इंतजार है अच्छा नंबर अनाउंस करन दा ओके जल्दी दे नाल फोन चको ओके नंबर नोट करो जी साडा एफएम रेनबो दा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9855101027 यानी कि 9855101027 और इस नंबर ते तुसी अपने वॉइस मैसेजेस भेज सकदे हो मैनू यानी कि तुहाडी दोस्त पूजा टोहानी नू हां जी आज मेरे नाल चल रहा सी जी सफर और ये सफर चलते चलते देखो जी अपने आखिरी पड़ाव ते है 1 घंटे दे विचों 5 मिनट खत्म हो चुके ने तुसी जल्दी दे नाल अपनी अटेंडेंस लगवाओ सो करदे हैं गल्लां बातां अज लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे मैसेजेस प्लीज़ ना करियो थोड़े छोटे मैसेजेस करियो ताकि बाकी सारे की भी वारी आ जाए है ना जेडे जिन्हां दे लंबे मैसेजेस होंदे ने बाकी मैनू पता कि कई तो बहुत मतलब ध्यान दे नाल मेरी गल सुनदे भी ने और फॉलो भी करदे ने और एंड विच कह देंदे ने कि मैडम देखो जी असीं तुहाडी गल सुनी है और बड़ा छोटा जिहा मैसेज किया है मतलब जरूरी नहीं है कि हर वारी छोटा ही करना जिहड़े मतलब बड़े कंसाइज जिहे मैसेज करदे तुसीं अगर कोई गल करना चाहुंदे तो तुसीं मेरे नाल शेयर कर सकदे लेकिन जिहड़े हमेशा ही लंबे मैसेज करदे ओह इन शॉर्ट भी गल कर सकदे ने सो मतलब थोड़ा जिहा चेंज फॉर अ चेंज कर लैणा चाहीदा है सो पूजा टोहानी दे नाल प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल अपना पंजाबी वैसे पंजाबी दी गल वखरी हुंदी है और खास करके जदों पंजाबी रोज़ नवे नवे कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाउण ते रिकॉर्ड तोड़न उदों खास करके जदों दुनिया कह रही होवे कि इट्स इम्पॉसिबल उदों मज़ा होर आउंदा है ना बस उदों माण वी हुंदा है पंजाबी होण ते चलो इसे नोट से सुनते हैं जी गाना प्रोग्राम दे विच पूजा टोहानी दे नाल दिल अपना पंजाबी सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो दे नाल

ओरी सूरत प्यारी प्यारी तू मैं जावा वारी वारी सजदे कर दी खलकत सारी हुंदे दूर हनेरे जी ओ काज सोचा दे विच पै गया मका फिरे चफेरे जी काजी सोचा दे विच पै गया मका फिरे चफेरे जी जिन बाबर दी

0: जी बिल्कुल। और वधिया लगा, मतलब कुदरत दा इदां दा जिहड़ा नज़ारा आ।
1: पटियाला जिला
0: जी जी
1: हुशियारपुर,
0: जी जी जी
1: देखिया चिड़िया पंछी बहुत बोल रहे हैं।
0: जी देख ले। और तुहाडा भी प्रोग्राम च शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिहड़े जिहड़े लिसनर्स दा साडे तक पहुंचाया गया मैसेज, आपां सारे मैं सारे ही मैसेज पढ़न की पूरी कोशिश कर दी है जी। मेरे वालों सारे मैसेज हो चुके ने कंप्लीट, लेकिन अगर बाकियां दे मैसेज रह गए ने तो उन्होंने मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहनी हाँ। हो सकता किसी कारण करके डिले हो गया हो, लेकिन तुसी जानते हो ना डिले मेरे वाले तो बिल्कुल नहीं सी। आप बैक टू बैक पढ़ी गए, लेकिन मैसेजेस ही साढ़े को इन्ने आते हैं कि टाइम बहुत थोड़ा रह जाता, एक घंटा कदों बीत जाता सानू पता ही नहीं लगता। सो इस करके तुहाडे बाकी दे मैसेजेस जिहड़े अज नहीं पढ़ होए, आप अगली बारी उन्होंने शामिल करने की कोशिश करांगे। दिल छोटा नहीं करना, प्यार ऐदी करते रहना। मैनू पूजा टोहानी नू फिलहाल दे इजाजत, बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। अगली बार मिलन तक दी आस ते उम्मीद नू रखो बरकरार ते मैनू करदे रहो याद। वाह वाह क्या शेर। अगले प्रोग्राम की कमान संभालन किरण दी, फिलहाल पूजा टोहानी दे इजाजत, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।

दोस्तों प्रोग्राम गीत बहार दी शुरुआत ही जी धूम मचाले, मतलब आपां इस प्रोग्राम दे विच पूरी दी पूरी धूम मचाउणी है। तुसी जाना किधरे नहीं क्योंकि जे तुसी ट्यून करके रखना 102.7 MHz तां ही तां तुसी इंजॉय कर पाओगे जी ये प्रोग्राम ते दी नाल होर बाकी सारे प्रोग्राम, क्योंकि हर एक घंटे दे बाद एक नवा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। नैक्सट वाला जिहड़ा गीत है ना, मैं डिसाइड किया कि क्यों ना नवें गीतों के पुराने गीतों का सुमेल इकट्ठा होंदा रहना चाहिए। एक ओ हीरोइन जिहड़ी बहुत ही सोहनी है, जिहदी समाइल हाले तक भी, मतलब उम्र का भावें कोई भी पड़ा आ गया पर अजे भी उन्होंने देखिए तो बिल्कुल उन्होंने समाइल तो ज्यों त्यों ही लगते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जिहड़ा एक गीत मैं चूज़ किया है, इसे गीत तो बाद उन्होंने नेम फेम और धक धक गर्ल का जड़ा ना टैग मिल गया सीगा। 1992 दे विच बनी फिल्म बेटा दा एक गीत जो कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने जड़ा बहुत ही बेहतरीन अदाकारी दे नाल निभाया है। अनुराधा पौड़वाल, उदित नारायणन और ये गीतकार ने समीर, मतलब कि ये गीत इन्ना मशहूर होया कि माधुरी दीक्षित नू धक धक गर्ल दे नाम दे नाल जाने जान लग गया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

पिया पिया ओ पिया पिया वाके जी प्रोग्राम गीत बहार जो कि 102.7 एफएम रेनबो दी चल रहा है जी। ते तुसी मेरे नाल नच रहे हो, मतलब कि धुम्मा पा रहे हो, ते नाल दी नाल म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हो, ते उहदे नाल नाल तुसी अपने घर दे काम भी कर रहे होवोगे। बिल्कुल जी, वह भी नाल नाल चलते रहने चाहिए ने, क्योंकि समा जिहड़ा ना वह किसी लिए रुकता नहीं है। ये नहीं है कि आप सिर्फ इंजॉय करना है तो अपने बाकी के काम छड़ देने, क्योंकि जी ये सारे शो डेली चलते हैं, तो डेली बहुत सारे गुलदस्ते जिहड़े ने वक्री वक्री प्रोग्राम असी भर के लैके आने, तो वक्रे वक्रे जिहड़े फुल चुने होंगे ने गीतां दे, नवें पुराने गीतों का सुमेल प्रोग्राम गीत बहार। हैं जी नैक्सट वाला थोड़ा जिहा कहिंदे ने कि पिया पिया तो ना हुण छड्ड के ना हाउस फुल फिल्म की जिहड़ी गल की जाए, तो जदों हाउस फुल फिल्म की गल आउंदी है तो अक्षय का चेहरा हाय रब्बा सच्ची, उहदा तो नाम और जिदा ही मतलब कि मैं खुद सोचती हाँ, मैं पता है कि तुसी सब भी इंजॉय करते होंगे जदों भी कोई उन्हां दी शरारत जी आवाज़, कोई भी डायलॉग या कोई भी मीम तुसी अपने किसी भी सोशल मीडिया से देखते होंगे, तो हासा अपने आप ही बन जाता है ना। कुछ किरदार कुछ जिंदगी लोग इदा के होंगे ने, तुहाडे चाहण वाले होंगे ने, भावें वह तुहाडे हम उम्र होण, तुहाडे तो वड्डे होण, या कई बार ना छोटे छोटे बच्चियां दा फेस भी सानू ना इन्ना प्यारा लगता है कि उन्होंने प्यारे प्यारे चुलबुली जिहा गल्लां ना कुछ भी कह लैन, कुछ भी कर जाण, तो असी ना खुश हो जाने। इस तरह कुछ एक्ट्रेस ने जिन्हां दे विचों है जी अक्षय कुमार। लो जी, अक्षय कुमार का किरदार फंक्शन वाला, तो फिल्म है हाउसफुल, मीका सुनिधि एंड साजिद खान की आवाज़ के एंजॉय कर दिया जी ये वाला ट्रैक।

जी आपका क्या होगा, बिल्कुल जी, जिहड़े भी साडे लिसनर ने उन्हां दा ते जो जो हो रहा है उह तां खूब इंजॉय कर रहे ने, क्योंकि जी प्रोग्राम गीत बहार दे विच जदों फिल्म हाउसफुल दे गीत लगे होणा, उह वी अक्षय कुमार दे फन शान दे नाल, ते फिर डांस तां बनदा ही है। हाँ जी, नवें पुराने गीत जिथे सानू यादां दे नाल जोड़दे ने, उत्थे पुरानियां फिल्मां नूं वी तरोताज़ा करन लई बहुत सारियां चीज़ां साडे दिमाग दे विच जहन दे विच आ जांदियां ने, क्योंकि जी उन्हां दा इक स्टाइल सीगा, भावें कि हुण उस दौर तों लै के हुण दे दौर तक बहुत कुछ बदल गया, और कहिंदे ने कि समें दे नाल नाल बदलना भी चाहीदा। म्यूजिक दे विच बहुत सारियां चेंजेस आईयां ने, तब्दीलियां आईयां ने, सिंगर्स बदल गए ने, पर जिहड़े साडे हीरो हीरोइनस ने उह तां उही रहे ने। ते इक जिहड़ी गल मैं पहले वी दस चुकी सी, पहले फिल्म जिहड़ी भी नवीं बनदी हुंदी सी ना, उस फिल्म दी कहानी दे नाल फिल्म दा नाम जिहड़ा या कोई इहो जिहा गीत हुंदा सी उहदे नाल, उहदे च कोई एक वर्ड चूज़ करके फिल्म दा नाम रख्या जांदा सी, पर हुण तां बहुत

0: टीजी हो गया, मतलब जी हाउस वन है, टू है, थ्री है, धूम वन है, टू है, थ्री है, रेस की गल कर रहा, रेड की गल कर रहा, किनिया सारिया फिल्मां ने। कई बार ना ये सोच के हासा भी आता होंगे कि बई जे फिल्मां इन्नी सोहनिया बना रहे तो घट्टो घट्ट उन्होंने नाम तो चेंज कर लो, जरूर एक टैग दे इको ही कहते लकीर दे फकीर बनना कि नहीं बई असी फिल्म का नाँ नहीं बदलना, बस एक दो तीन अगे पिछे ला देना। सो जी आप भी एक दो तीन वाली गिनती तो गांह वधदे हैं क्योंकि गीतों की लड़ी तो इदा ही चलती रहनी है। 10:44 हो चुके हैं तो अगला गीत ओ गर्ल यू आर माइन तरुण सागरन अल्याशा मंदोसा की आवाज़ के।
1: ओ तेरे इश्क में।

लो जी, सनी देओल जी तो कह गए ने कि मैं क्या करूं भाई, तुसी कुछ नहीं करना है, तुसी बस एक दो ना भंगड़े वाले या कोई डांस स्टेप सीख लो ता कि जदों कि दोबारा तुसी फिल्म दे विच तुहानू कोई इहो जिहा गाणा मिल जाए ते तुहानू डांस करन नू कहा जावे ते जिन्ने भी तुहाडे चाहुण वाले ने तुहाडीआं फिल्मां पसंद करदे ने, तुहाडे जिहड़ा 100 किलो दे हथ नू पसंद करदे ने, उहनां नू लगे कि वाकई जी साडे फेवरेट वाले हीरो ने हुण डांस दे दो स्टैप जरूर सीख लए ने। 102.7 FM ते प्रोग्राम चल रहा जी गीत बहार, और इस बहार का आखिरी गीत जो कि फिल्म फना दे विचों मैं लिया है जी, सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज़ च, जी हाँ मेरे हाथ में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुहाडे रेडियो सैट ते चलदा रहिंदा है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी जलंधर FM बैंड 102.7 ते जी गीत बहार प्रोग्राम का आखिर वाला गीत आपां इकट्ठे इंजॉय करना है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: जी सर, और सब खैरियत सुख शांत?
1: हाँ, सुख शांत वधिया।
0: आज नेटवर्क ठीक है?
1: हाँ जी बिल्कुल वधिया, HD आ रही आवाज है।
0: अच्छा, अज मतलब गुआंढ़ियां दा नेटवर्क नहीं फड़ रहा ते ना ही तुसी हेडफोन लाए?
1: ब्लूटूथ बंद
0: ब्लूटूथ
1: करके
0: ऑफ
1: लगाया ना
0: कीते?
1: फोन।
0: और
1: ओ
0: तुहानूं पता
1: नरचन
0: ही
1: पता
0: है।
1: नहीं किहदे नाल गल्लां मारदा, मैं फिर दसहरी नूं बहुत फोन लग्गिया सी।
0: ओके जी। और दूजी गल, मैं तुहानूं इह वी दस देवां कि बाला हैडफोन यूज करन दे नाल वी दिक्कत आउंदियां ने,
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्योंकि जिदा आपां नॉर्मल कॉल करदे हाँ तो हैडफोन जिहड़े इन्ने इन्ने घंटे हुण यूज टू हो गए, बड़े सारे परसनस मैं देखिया कि वह किन्ने किन्ने घंटे अपने कन्नां दे विच टूटियां लगा के ना मस्त रहिंदे ने, दुनिया ते कुछ आ रहा जा रहा कुछ पता नहीं हुंदा उन्हां नूं।
1: हाँ जी, हाँ जी, ये तो है।
0: जी सर।
1: गल ज्यादा यूज नहीं करता मैं जी, कल ब्लूटूथ ही ऑन सी, मेरा हेडफोन नहीं लगे हुए सी
0: ओके ओके ठीक है
1: जी।
0: जी। तो सर जी, हुण अपनी फरमाइश दस दिओ।
1: दीपक ढिल्लों का सॉन्ग है हुक, ये प्ले कर दो।
0: अच्छा जी, तो जे कि साढ़े को असी मतलब साड़ी प्लेलिस्ट विच गीत ना हो फिर
1: मेहनत है, होएगा नहीं तो फिर और प्ले कर देना। होगा बड़ी मेहनत
0: ठीक है जी, बड़ा वधिया लगा है कि तुसी हर चीज़ नू नोट कर दे, अच्छी बात है ये वाली भी, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा सर,
1: थैंक यू मैडम।
0: थैंक यू सो मच। और जी ये जिहड़ी साड़ी कॉलर ने ना जिद्दां कि बहुत अच्छियां गल्लां वी दे नाल नाल ये भी दस देने कि कहड़े गीत FM ते प्ले हो चुके ने ते कहड़े नहीं होए, नवें पुराने गीतां दा सुमेल ते नवें पुराने सिंगर्स दा सुमेल ये लैके आउंदे ने, बड़ा वधिया लगदा है वाकई जी। ये कोई ये नहीं है कि बड़े दिमाग वाली गल है और उस दे नाल सोचण वाली गल ही, और डायरी ते नोट करना मतलब इन्नी चीज़ा सोचनियाँ फिर उसकी जानकारी रखनी, ये अपने आप दे विच बड़ी वड्डी इनफॉर्मेशन जिहड़ी ने चक्की फिरदे ने। दीपक ढिल्लों की आवाज़ दे विच आपां गीत सुणदे आ हूक।

समा हो गया जी एफएम न्यूज हेडलाइंस दा। क्वाड विदेश मंत्री दी मीटिंग आज नवी दिल्ली विच होवेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तो सिक्किम दे 3 दिन दौरे ते होंगे। जम्मू कश्मीर ते गुलमर्ग च गंडोला रोपे विच तकनीकी खराबी तो बाद फसे सारे 300 सैलानियों नूं सुरक्षित बचाया गया। पंजाब विच अज आम नगर निगम चोणां 2026 लई 103 नगर पालिकावां वास्ते वोटां पै रहीआं ने। दिल्ली विच सीएनजी दी कीमत विच 2 रुपए प्रति किलोग्राम दा वाधा कीता गया है। विश्व सेहत संगठन ने इबोला वायरस नूं जनतक सेहत एमरजेंसी ऐलानिया। सिविल हवाबाजी डायरेक्टोरेट जनरल ने जारी किए निर्देश। पंजाब सरकार वल्लों ईद उल जुहा बकरीद के संबंध में सूबे के समूह सरकारी दफ्तर बोर्डा कारपोरेशन सरकारी विद्यक अदारों में 28 मई को गस्टर छुट्टी का ऐलान किया गया है। उधर मौसम विभाग वालों अज दिल्ली विच लू चलन बारे येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और पछमी राजस्थान विच भी अज अत दी गर्मी पैण बारे पेशनगोई हुई है। भारत ने SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप विच मालदीव नूं 11-0 नाल हराया। IPL क्रिकेट च अज पहले क्वालीफाइंग विच मौजूदा चैंपियन रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। ई सन हुण तक दी FM न्यूज़ हेडलाइंस।

प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच दही और योगर्ट दे विच फर्क मैं तुहानू दस रही सां। दही जिहड़ा कि हर घर दे विच जरूर डेली जिहड़ा जमाया जांदा, मतलब दुध नू जाग लाई जांदी है और खास करके रात नू इहनू जाग ला के रख्या जांदा है, जिहदे तों लस्सी, कढ़ी, रायता ते घरेलू खाण वालियां बहुत सारियां चीज़ां बना सकदे हां जेकर सानू बनाउणियां आउंदियां ने। तो योगर्ट की जो मैं गल कराँ तो समोदी, डाइट फूड और डेजर्ट वगैरह वाली चीज़ों में ही यदि वरतों की जाती है। जिहड़ा घर का बनया हुआ दही हुंदा है वह ना आम तौर दे विच उहदे विच शक्कर नहीं हुंदी, पर बाजार वाले जिहड़ा योगर्ट है इहदे विच ना कई तरह के फ्लेवर भी आउंदे ने। इहदे विच वक्री जी एक शुगर की मिठास हुंदी है, कईयां नूं ये बहुत टेस्टी भी लगता है, कईयां नूं बिल्कुल भी पसंद नहीं आउंदा। मतलब कहने तो भाव यह है कि जिहड़ा परंपरागत घरेलू खाना साडा वो दही हैगा, लेकिन प्रोसैस अते क्रीमी वजन वाला जिहड़ा योगर्ट है वो न्यू ट्रेंड दे विच है। और जी दही बनाउण लई घर दी पुराणी दही नूं जमाउण वास्ते वरत्या जांदा है, इस विच कुदरती बैक्टीरिया हुंदे ने। तुहानूं पता है कि आपां दही जिहड़ा हुंदा है उहदे विचों एक अद्धा चम्मच एक साइड ते रख लैंदे आ फ्रीजर फ्रिज दे विच सांभ के, क्योंकि फिर आपां सुचे हत्थां दे नाल उहनूं दुबारा जिहड़ा दही जमाउणा हुंदा दुध नूं जाग लाउणी हुंदी है। इसी तरह जिहड़ा योगर्ट है उह खास तौर ते मतलब इदां दा उहदा प्रोसैस नहीं हैगा कि कोई दुध होवे ते उहदे विच उहनूं जाग लगाई जाए, उहदा प्रोसैस बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस बारे होर बहुत सारी जानकारी होएगी, लेकिन जस्सी गिल जी कह रहे ने कि इस प्रोग्राम दे विच एक बार मैनूं जरूर मौका दिओ गाउण दा। सो जी क्योंकि उन्हां दी तमन्ना है तो आपां उन्हां दी तमन्ना हुणे पूरी कर देनी है।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट

गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मकसम सुनते रहिए 102.7 FM।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: 107 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਡ ਡੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਤ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਡ ਡੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग नवी दिल्ली में हुई है। मीटिंग में हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी बारे सहमति बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने अज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद से सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। BSF के जवानों नाल गलबात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के 3 दिन दौरे पर गंगटोक पहुँच गए हैं। पंजाब 8 नगर निगम 75 नगर कौंसलों से 20 नगर पंचायतों की चोणों लिए अज वोटा पै रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 31.6% वोटिंग दर्ज की गई है। तो IPL क्रिकेट में अज धर्मशाला पहले क्वालीफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से सारे श्रोता साढ़े नाल फिर तो जुड़ चुके ने ते प्रोग्राम कंटिन्यू कर दिया मिड डे मेलोडीज़।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आरजे जोरावर सिंह इज हेयर। दोस्तों, तुसी सुन रहे 102.7 मेगाहर्ट्ज़ जलंधर दा रेनबो चैनल है ते दिल आज शायर है। प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत स्वागत है। एक ऐसी महफिल है जिथे एहसास बोलते ने ते खामोशियां भी गीत बन जांदियां ने। रातां दी चुप विच जदों यादां गल्लां करदियां ने, दिल दियां सुनियां रावां भी रोशन हो जांदियां ने। कुछ नाम होंदे ने जो कदे भुले नहीं जांदे ते कुछ रिश्ते सिर्फ एहसासां नाल निभ जांदे ने। दोस्तों, अज दा ये प्रोग्राम दिलां दे नाम। अज इस प्रोग्राम दे विच असी गल्लबात करांगे

है ना, टाइप करके तुसीं रोमन लैंग्वेज दे विच भेज सकते हो। सो नाल दे नाल सानू अगला मैसेज जिहड़ा आया है जी, मुहब्बत। मुहब्बत रूह दी ओह खुशबू है जो दूर रह के भी महसूस हुंदी है। तेरा नाम लैके ही मुस्कुरा दिंदे हाँ, लोग पुछदे ने खुशी दा राज की है। आए हाय हाय हाय क्या बात है। तेरा नाम लैके ही मुस्कुरा दिंदे हाँ, लोग पुछदे ने खुशी दा राज की है। इश्क ओ नहीं जो दुनिया नू दिखाया जावे, इश्क ओ है जो चुप चाप दिल विच निभाया जावे। तेरियां यादां दा नशा भी कमाल दा है, तेरियां यादां दा नशा भी कमाल दा है। तेरियां यादां दा नशा भी कमाल दा है, ना छड्या जांदा है ना ही भुलाया जांदा है। मुहब्बत तां रब वर्गी हुंदी है, नज़र तां नहीं आउंदी पर सांभ लैंदी है। हाय हाय हाय क्या बात है। मुहब्बत तां रब वर्गी हुंदी है, नज़र तां नहीं आउंदी पर सांभ लैंदी है। सो दोस्तों जिहड़े नवे स्रोते साडे नाल जुड़े ने उन्हां नूं एक वारी मैं कॉन्टैक्ट नंबर फिर तो दस दिंदा कि तुसीं सानूं वट्सएप दे उत्ते अपने दिल दे जज्बात या जिहड़े तुसीं आप उस वर्के ते उस खाली सफ़े ते खूबसूरत खाली सफ़े ते उह केरे ने खूबसूरती दे नाल उह साडे नाल शेयर कर सकदे हो। 9855101027 यानी कि 9855101027 ते इत्थे तुसीं अपने जिहड़े भी दिल दे जज्बात लिखे हुए ने उह केरे हुए ने सुंदरता दे नाल ते तुसीं सानूं भेज सकदे हो। ते जरूर भेजो क्योंकि असीं तुहाडी इंतज़ार दे विच बैठे हाँ ते खूब सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो उस तो पहला मैं कहना एक जिहड़ी गज़ल है वो तुसीं जरूर सुनो।

जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

वेलकम बैक दोस्तों, ते तुसी अपना फेवरेट शो जड़ा सुन रहे हो दिलाज शायर है। सो ये शो दे विच जिथे तुसी साडे नाल अपने दिल दे जज्बात और दिल दीयां कहानियां और अपने इश्क मुहब्बत दीयां कहानियां जिहड़ियां साडे नाल शेयर कर रहे हो, ते असी तुहाडे लई ही इत्थे बैठे हां। ते नंबर तुसी नोट कीता होया ते नाल दे नाल सानू मैसेज आ रहा, ते असी हुण अगला मैसेज तुहानू पढ़ के सुनाउने आ जी। बड़े खूबसूरत तुसी मैसेज भेजदे हो और बड़ा धन्नवाद है तुहाडा कि तुसी बहुत हुण सोहणे सोहणे ढंग दे नाल लिख के सानू मैसेज भेज रहे हो। अगला मैसेज जिहड़ा तुहानू पढ़ के सुनाउने आ जी, यह आया जी गोपी रेरू जलंधर। ये लिखते ने कि साधां दी लगी किसी फकीरां दे नाल, वाह वाह, साधां दी लगी किसी फकीरां दे नाल, रौले यह पैंदे अंत जमीरां दे नाल। साधां दी लगी किसी फकीरां दे नाल, रौले यह पैंदे अंत

0: मतलब सब दा स्पैम कट जाएगा। हाँ, रिपोर्ट मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करो। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दो, रिपोर्ट करना शुरू करो।
1: वेलकम बैक जी, तुसी अपना प्यारा जिहा शो जिहड़ा सुन रहे हो ना दिल अज शायर है। ते कमाल दी गल आ, देखो जी सारी गलबात जिहड़ी ना कनैक्टिविटी दी हुंदी है। इट्स ऑल अबाउट फील एंड इट्स ऑल अबाउट कनैक्टिविटी। जदों असी एक दूसरे नाल कनैक्ट करदे हां ना ते मज़ा उदों ही आउंदा। ते मैं इस गज़ल तो पहला ना तुहाडे मैसेजेस जिहड़े आ रीड कर रहा सी, और वाकई मैनू भी कनैक्टिविटी फील हो रही है, क्योंकि तुसी कनैक्टिविटी फील कर रहे हो, इस करके सानू भी कनैक्टिविटी जिहड़ी फील हो रही है। सो आर जी जोरावर सिंह दे नाल तुसी अपना जिहड़ा प्यारा जिहा शो जिहड़ा इंजॉय कर रहे हो, और सानू कईआं ने तस्वीरां भी भेजियां, पर मेरा आइडिया गलत नहीं सीगा, बिल्कुल ठीक सीगा कि सानू सुनने वाले जिहड़े ने ना ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ।

इस तस्वीर दे विच ना उन्होंने अपना काम काम करदिया होया भेजा सानू। उन्होंने तस्वीर दे विच दिखाया कि टेलर ने ते कोई सी रहे ने कपड़ा ते इहने पाली प्याला हुशियारपुर तो। तो इन्हां दी पहला भी असी एक जिहड़ी लिखत वो पढ़ के तुहानू सुनाई सी, वो कुछ इस तरीके नाल सी, हम सफर दिल दी गल साडियां किस्मतां च लिखिया होवे ना होवे पर मेरे दिल विच तू हमेशा मेरा हम सफर रही। कदरां उत्ते नसीब लिखिया जा लिखिया जाता है पर साथ तां दिलां दे वादियां नाल निभाया जाता है, वादियां नाल निभाया जाता है। कमाल दी गल है ना, बड़ी खूबसूरत लगती है चीज़ जदों तुसी दोस्त सानू ऐदां दीआं खूबसूरत तस्वीरां भेजदे हो जिहदे नाल पता चलता है कि किन्नी सोहणी कनैक्टिविटी साडे दरमियान हो रही है ना। सो अगला मैसेज मैं जरूर पढ़ांगा और मैसेज सानू भेजा जी हुणे आपां पढ़ के तुहानू सुणाउने आ। ओके मैसेज अगला सानू भेजा जी ओके लिखते ने कि इन्होंने पहला लिखा जी एफ एम फिर उस तो बाद रेनबो यानी कि सैवन कलर्स का इन्होंने एक इमोजी लगाया। फिर लिखते ने दिल आज शायर है आर जे सर, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। खाना बना रहे हैं खाना ऊपर खाने के ऊपर शेर तुसी ये क्या है ऊपर, शायरी खाने का स्वाद तभी खास होता है जब अपनों का साथ पास होता है। बाबा क्या बात है, शायरी खाने का स्वाद तभी खास होता है जब अपनों का साथ पास होता है, क्या बात है। वरना पकवान तो हर जगह मिल जाते हैं, दिल का सुकून कहाँ हर बार होता है। अगे मुझे भेज दे पे ने इन्होंने फॉक भेजा, प्लेट और एक नाइफ, फिर स्टार्स, फिर हासे वाली मुझे भेजी है। देखो कितनी खुशी होती है, तुसी खुश हो तो असी खुश हाँ। किरण नरूला जी ग्रीन पार्क कपूरथला तो धन्यवाद साहब, ते अगो हाथ जोड़ते हैं जी, इमोजी भेजते, अस भी तुहाडे अगे हाथ जोड़ते हैं जी। बड़ी खुशी होंदी है जदों तुसी सानू खूबसूरत मैसेजेस भेजते हो। सो अगला मैसेज असी पढ़ते हैं। देखो जी शो करन दा भी मज़ा उदों ही आउंदा है जदों तुसी भी इंजॉय कर रहे हो, है ना। तो तुसी इंजॉय कर रहे हो, बड़ी खुशनसीबी है साडी। ओके अगला मैसेज भेजते ने मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा बसंत सिंह टेलर बेटा लवदीप सिंह जसल, कर लिया फैसला जे जानदा तां जा मैं नहीं रोकांगा। हाए कर लिया फैसला जे जानदा तां जा मैं नहीं रोकांगा, जो दिल विच है बेझिझक बोल मैं नहीं टोकांगा, गलती तेरी सी जा मेरी इकला बैठ सोचांगा, तेरी जगह दिल विच कोई होर नहीं लै सकता। हाए ये हक है जी पूरा, है ना, विश्वास है। सोच लिया जसल ने अपने आप नू हिजर दी अग विच चोकांगा। अंग्रेजी च कहिंदे हुंदे बी ए मैन ब्रदर, तुहानू कहिण दी लोड़ नहीं क्योंकि वाकई ये जिहड़ी है ना एक मर्दां लई गलबात है। कदी क्योंकि जिहड़ा एक रीयल मर्द हुंदा ना, रीयल परसनैलिटी हुंदी है जिहड़ी, वह कदी किसी नू फोर्स नहीं करदी, है ना, तो वह उल्टा ख्याल रखदी है, वह सुनदी है। तो जिहड़ियां साडियां मावां भैणां धीआं ने सानू वध तों वध उहनां नू जरूर सुनना चाहीदा, तो क्योंकि देखो जी सुनन दे नाल जे मसले का हल हुंदा होवे तां होर की चाहीदा। तो सियाणे किसे वेले कहिंदे हुंदे अपनी गलती ना भी होवे ना तो कदी कदी मन लैनी चाहिए है। ये नाल की है रिश्तियां दे विच मिठास पैदा होंदी है, खूबसूरत बनते हैं रिश्ते। सो लो जी नाल दे नाल ही अगला मैसेज भी जरूर पढ़ांगे। अच्छा जी सानू किरण नरूला जी ने भेजा मैसेज, थैंक यू सो मच आर जे जोरावर सिंह जी, टू हार्टेड विद वन इमोजी स्माइल। वाह जी वाह। सो अगला मैसेज अहीं पढ़ते हाँ। वाह वाह बड़ी सोहनी राइटिंग च भेजा इन्होंने। तुम ठीक हो ना, ठीक रहना, कभी रोना नहीं, खुद को खोना नहीं। तुम ठीक हो ना, ठीक रहना, कभी रोना नहीं, खुद को खोना नहीं। अगर कभी मेरी याद आए तो चुपके से मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारी हंसी में ही मेरी पूरी दुनिया बसती है। दर्द कितना भी हो सीने में, किसी के सामने टूटना नहीं। और अगर कभी बहुत अकेला महसूस हो तो बस इतना याद रखना, कोई है जो तुम्हारी खुशी के लिए हर दुआ में तुम्हें मांगता है। पाजी तुम मेरा रोना कढ़ा देना सी यार, मैनू भी कोई याद आ गया, तुसी कमाल ही कर दे यार, रवाओगे तुसी मैनू है। ये भेजा जी सोनू मलेरकोटला, सोनू मलेरकोटला तो। वाह वाह इन्होंने एक

पे जिया, तरीक लिख के बाकायदा लिखी, बड़ी सोहनी राइटिंग है यार, कमाल। डेट 26/5/2026, ओके ये लिखते ने। चलो तस्वीर में थोड़ा जा वड्डा कर लिता जाए। ए साहब जी लिखते ने कि नौकरी ने सबको दूर कर दिया, अपने घर को भी मजबूर कर दिया। जो लोग हर रोज साथ बैठते थे, वक्त ने सबको मशहूर कर दिया। अब सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात थक कर सो जाते हैं। माँ के हाथ का खाना छोड़कर होटल के सहारे जी जाते हैं। सही कह रहा है, साढ़े फ्रीलैंसरों का भी यही कुछ हाल है। पहले दोस्तों संग हंसी रहती थी, हर बात में खुशी रहती थी। पहले दोस्तों संग हंसी रहती थी, हर बात में खुशी रहती थी। अब ऑनलाइन तो सब दिखते हैं, पर बात करने की फुर्सत नहीं रहती। आए कमाने निकले थे सुकून के लिए, पर सुकून ही पीछे छूट गया। नौकरी तो मिल गई आखिर, पर अपना घर कहीं छूट गया। ओए ओए, पर चलो कोई गल नहीं, तुसीं साडा ये रेडियो जिहड़ा ना सुणदे रहा करो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते, ते इत्थे असीं तुहाडे नाल दिल दे जज़्बात जिहड़े आ सारे नाल शेयर करांगे। देखो जी, सियाणे कहिंदे ने करोंगे गल तां मिलेगा हल। इंसान सोहणे इंसान दा साथ जरूर भालदा, ते असीं तुहाडे साथी हैगे आ, मतलब हैगे सी, हैगे हाँ और रहांगे हमेशा, ते तुसीं वी साडे साथी हो। ते इदां ही रल मिल के ही जिंदगी नूं ना खूबसूरत बना लैणा, होर खूबसूरत बना लैणा। तो नाल दे नाल असीं अपने किसी भी साथी नूं जिहड़ा ना नाराज़ नहीं करना, असीं सारे मैसेज जरूर पढ़ने आ। ओके जी, सानू मैसेज भेजदे ने अगले साथी, ये भेजदे ने, ना शिकायत रही ना कोई गिला रहा, बस तेरे जाने के बाद दिल थोड़ा सा खफा रहा। बिल्कुल इदां ही हुंदा हुंदा, तो पास था तो हर दर्द छोटा लगता था, अब तेरी यादों का शोर हर रात रुला जाता है। हमने चाहा था तुम्हें अपनी हर दुआ में, पर किस्मत ने शायद तुम्हें लिखा ही नहीं था हमारी वफा। ओए होए, क्या बात है, गहरियां गल्लां। हमने चाहा था तुझे अपनी हर दुआ में, पर किस्मत ने शायद तुझे लिखा ही नहीं था हमारी वफा। अब मुस्कुरा तो देते हैं, पर दिल अंदर से टूट जाता है। ये बिल्कुल वह सच्चियां गल्लां लिखियां तुसी। अब कोई तेरे जैसा नाम लेकर हमें फिर तेरी याद दिलाता है। हाय ओए, वो इन्हें दिल ना तोड़या करो यार, किसी दे इदा दिल नहीं तोड़ने चाहिए। पता सियाने कहंदे हाई हो जांदी हुंदी है। नहीं चलो जोक सपाट, कदी भी किसी आशक का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं एक्चुअल दे विच बड़े आशक देखे ने जिहड़े अपने महबूब लई सब कुछ करन नूं तैयार हुंदे ने, सब कुछ करन नूं तैयार हुंदे ने, पर जिहड़ा अगला महबूब आ उहनूं भी समझना चाहीदा। असल दे विच ना असीं सोची पै जांदे आ कि समाज की सोचेगा, आ कौन, मतलब ये कोई सोचेगा, इदां होएगा उदां होएगा। असीं जाता पाता दे विच भी किते ना किते वंडे जांदे आ। सियाणे कहिंदे ने सानूं एक बॉय और एक गर्ल दी खुशी देखनी चाहीदी आ, कि वह खुश ने एक दूसरे दे नाल, एक दूसरे नूं समझना चाहिए है। और न्याणे अजकल दे इन्ने भोले तां है नहीं कि भी उन्हां नूं किसी चीज़ का पता नहीं, उन्हां नूं ईवन दैन इतों तक पता कि असी अपनी फ्यूचर प्लैनिंग्स कितों तक करनी आ। अं जो बुढ़े होवांगे, असी जो व्याहे जावांगे, असी जो साढ़े गांहू न्याणे होए, फिर उस तो बाद असी जो बजुर्ग होए, मतलब उन्हां नूं एंड तक अपना पता हुंदा कि असी की करना आ, तो किवें किवें असी एक दूसरे दे नाल सोहने ढंग दे नाल विचरना आ। मतलब कुल मिला के अज की पीढ़ी जिहड़ी बहुत सियाणी आ, तो सानू अज की पीढ़ी नूं भी सुनना चाहिए है। तो अक्सर जिहड़े महबूब हुंदे आ ना, वह दिल तां करके दुखा देंदे क्योंकि उन्हां नूं फैमिली प्रैशरस भी हुंदे ने, सोसाइटी का प्रैशर हुंदा आ। अज वेखो साडे देश नूं आजाद होया नूं किन्ने साल हो गए, सियाणे कहिंदे ने असी आजाद तां हो गए, पर फिर भी किते ना किते ना अजीब जिहियां सोचां दे असी गुलाम आ। सानू अपने देखो ना, तुसीं साडे देश दे जिहड़े बहुत महान जिहड़े मिनिस्टर्स ने जिन्हां ने इन्नी तरक्की कीती है, साडे ऑफिसर्स ने, साडे जिहड़े कलाकार ने, साडे देश विच भरपूर ज्ञान है, साडे देश विच गुरु जन ने,

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हीट इमरजेंसीज। इस प्रचंड गर्मी में कैसे करें खुद का बचाव, ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है

0: आज के कार्यक्रम में आपका
1: धन्यवाद बहुत
0: जी। सर, आज का जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि हीट इमरजेंसीज या गर्मी से संबंधित आपात स्थिति क्या होती है?
1: इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है, यानी छोटी मोटी घमौरियों से लेकर या पैरों में सूजन से लेकर के एक जो हीट स्ट्रोक तक, ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें जो हीट रिलेटेड इमरजेंसीज आ सकती हैं। लेकिन छोटी मोटी जो घमौरियाँ होती हैं उसमें तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक जैसी जो बीमारी है ये काफ़ी ही संगीन है और इसमें मोर्टेलिटी 50-70% तक हो सकती है इलाज मिलने के बावजूद।
0: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि संगीन, ये शब्द जहां जुड़ जाता है वहां पे बहुत सारी जिज्ञासाएं भी जुड़ जाती हैं। आगे आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: hey!

0: सर, ये हिदायत तो हमने सुन ली और बाकी हिदायतें अब आपसे लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून
0: जी।
1: सर।
0: गुड आफ्टरनून सर, नाम बताएं अपना।
1: आई एम कुंवर सिंह फ्रॉम दिल्ली।
0: जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताएं अपना।
1: आई वांट टू नो व्हाट आर सिम्पटम्स ऑफ हीट स्ट्रोक एंड एज दिल्ली इट इज इन पीक टाइम नाउअडेज, व्हाट होमली प्रिकॉशंस वी कैन टेक टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस हीट स्ट्रोक। सेकेंडली, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर व्हिच इफ ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट। दैट्स इट।
2: थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले तो यह है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण कैसे हैं और क्या उसमें बचाव हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हीट स्ट्रोक ये सबसे गंभीर समस्या होती है, इसलिए इसका नाम हीट स्ट्रोक दिया हुआ है। और इसमें मोर्टेलिटी, जैसे ने बताया कि जो डेथ रेट है वो 50-70% है, डिस्पाइट अगर आप बेस्ट ऑफ केयर देते हैं उसके बावजूद भी, तो बहुत हाई मोर्टेलिटी के साथ ये मतलब डेथ रेट इसमें काफ़ी हाई होने के है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट यूजली वॉमिटिंग करता हुआ आता है, नोजिया वॉमिटिंग, या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम में यानी गफलियत में आता है, और साथ में उसको प्री कोमा जो कंडीशन होती है, हेडेक भी हो सकता है, और पसीने वगैरह आना उसको बंद हो जाते हैं और वो कुछ अनाप शनाप बकने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर वो कोमा में जाने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो, या फिर दौरे पड़ रहे हों, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम रिकग्नाइज करते हैं जब टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 106, 107, 108, 109 तक भी चला जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर साथ में गफलियत में और अनाप शनाप बकना और प्री कोमा या कोमा में होना या फिर बेहोश होना और या फिर दौरे पड़ना, ये सब चीज़ को देखते हुए डॉक्टर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं हीट स्ट्रोक का। तो ज़्यादातर ऐसे समय पे ये डायग्नोसिस बनता है जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हीट वेव की स्थिति में, ऐसे गर्मी के वो मौसम में बनाया जाता है ये हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस। और इसमें बचाव के जो ये है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को बाहर जो तपती हुई धूप होती है 12 बजे से 2 बजे तक 4 बजे तक भी, तो ऐसे समय में हम लोग बाहर ना निकलें, और निकल भी रहे हैं तो प्रिकॉशंस लें, जैसे कि हल्के रंग वाले कॉटन सूती कपड़े पहने, कैप पहने या गमछा लें, या फिर कोई सर पे ढकने के लिए अम्ब्रेला ले सकते हैं, छतरी होती है वो ले सकते हैं आप, और साथ में कुछ पानी ORS या किसी भी तरल पदार्थ को पीते हुए, अपने आप को हाइड्रेशन रखते हुए आप इस अगर निकलना भी है तो आप निकलिए, और ज़्यादा कम से कम समय में अपना काम करके छांव में आप वापस आ सकते हैं, या फिर इसको पोस्टपोन कर दें कि ये जो 12 से 4 के बीच का जो समय है इससे पहले कर लें या इसके बाद करें। और जो लोग, जैसे खास करके जो लोग वेंडर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं या पुलिसकर्मी हैं, ये लोग को विवश होते हैं इनको, तो ये लोग भी छाए में ज़्यादातर रहें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रहें, और अपने आप को बीच बीच में हाइड्रेट करते रहें, और जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे लूज़ कपड़े पहने, टाइट सिंथेटिक कपड़े ना पहने, तो ये चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं। और जहाँ तक कि बॉडी का सवाल है, एक्लेमेटाइज धीरे धीरे होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो गर्मी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम भी होती है। तो अगर आप जैसे मान लो कहीं से ठंड इलाके से एकदम से गर्मी वाले इलाके में आते हैं तो आप एक्लेमेटाइज नहीं है, आपका शरीर जो है वो तैयार नहीं है हीट को सहने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में वो झेल नहीं पाता है, हीट स्ट्रोक ऐसे लोगों को बहुत होता है। मान लो जैसे कि आप गर्मी के मौसम में आप हिल स्टेशन पर चले जाते हैं और फिर आप 2 हफ्ते वहाँ या 3 हफ्ते वहाँ से वापस आते हैं, तो अगेन आप डी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, यानी कि आप जो पहले एक्लेमेटाइज हो रहे थे हीट को सहने के लिए, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही वो व्यक्ति डी एक्लेमेटाइज होता है, फिर वापस आता है, तो हीट में उसको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने हीट वेव की चर्चा की थी, क्या किस तरह से माना जाता है कि ये हीट वेव है?
2: देखिए, अलग अलग इसके वो हैं, प्रमाण होते हैं, जैसे कि प्लेन की बात करें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है

0: तापमान, ड्राई टेम्परेचर जो है, और दो दिन तक लगातार रहता है और दो स्टेशंस में मेजर होता है, तो इसको हम घोषणा कर देते हैं हीट स्ट्रोक, हीट वेव है
1: जी।
0: और सिवियर हीट वेव होता है जब 47 से ज़्यादा लगातार दो दिन तक दो स्टेशंस में हम मेजर करते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये, और या फिर क्या होता है कि नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब 4.5 से 6.4 तक, अगर वो ज़्यादा है
1: जी,
0: इससे ज़्यादा है तो हम हीट वेव कहते हैं, और अगर 6.5 से ज़्यादा उसका जो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा है, टेम्परेचर डे टाइम टेम्परेचर की बात हो रही है
1: जी,
0: तो हम कहते हैं कि इसको सीवियर हीट वेव है
1: जी। अगर बात की जाए कि तपिश और इमरजेंसी की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, तो किस तरह से प्राथमिक उपचार शुरू किया जाए?
0: सबसे पहले देखिए, अगर कोई हीट स्ट्रोक का आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाता है रास्ते में, या आपके ही कोई परिजन मूर्छित हो जाते हैं या कोई और सिम्टम शो करते हैं, तो उनको पहले ठंड छाए में ले जाएं, ठंडे उसमें ले जाएं, और फिर उसको थोड़ा सा कपड़े ढीले करें, उनसे देखें कि किस स्थिति में है, वो बोलने की स्थिति में है कि नहीं है।

0: टेम्परेचर है, मतलब 4.5 से 6.4 तक, अगर वो ज़्यादा है
1: जी,
0: इससे ज़्यादा है तो हम हीट वेव कहते हैं, और अगर 6.5 से ज़्यादा उसका जो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा है टेम्परेचर, डे टाइम टेम्परेचर की बात हो रही है
1: जी,
0: तो हम कहते हैं कि इसको सीवियर हीट वेव है
1: जी। अगर बात की जाए कि तपिश और इमरजेंसी की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है तो किस तरह से प्राथमिक उपचार शुरू किया जाए?
0: सबसे पहले देखिए, अगर कोई हीट स्ट्रोक का आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाता है रास्ते में, या आपके ही कोई परिजन मूर्छित हो जाते हैं या कोई और सिम्टम शो करते हैं, तो उनको पहले ठंड छाए में ले जाएं, ठंडे उसमें ले जाएं, और फिर उसको थोड़ा सा कपड़े ढीले करें, उनसे देखें कि किस स्थिति में है, वो बोलने की स्थिति में है कि नहीं है या बिल्कुल ही बेहोश है। ऐसे में पैर ऊपर कर दें थोड़ा सा, अगर वो होश में है बातचीत कर रहे हैं तो पानी दें उनको पीने के लिए, अगर ORS है तो ORS दे दीजिए, नहीं तो वैसे पानी दे सकते हैं। अगर बेहोश हैं तो फिर पानी देने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उनको पानी डालें, छिड़काव करें, या गीला कपड़ा,
1: हाँ
0: गीला नहीं नहीं पूरे बॉडी पे आप डाल सकते हैं, हाथों पे, पैरों पे, छाती पे भी और पेट पे भी डाल सकते हैं, फेस पे भी डाल सकते हैं, और पंखा करें खूब
1: जी,
0: है ना, काफ़ी उससे पंखा करें तो ताकि टेम्परेचर कम कर सकें, और उसको जल्द से जल्द, अगर ज़्यादा सीरियस लग रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं, गफलियत में जा रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में एकदम से हॉस्पिटल आना बहुत
1: जरूरी
0: हो जाता
1: होता है जी। डॉक्टर साहब आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सर,
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, बताएं सर क्या सवाल है
2: मेरा
1: आपका?
2: कहना है कि जिस जैसे गर्मी बढ़ती है हमारे दिल्ली NCR में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में
1: जी,
2: सड़क पर जो शरबत पानी की व्यवस्था की जाती है और उसमें बड़ी मात्रा में शुगर डालते हैं
1: जी,
2: और कलर भी डालते हैं, तो मेरा पूछना है कि, और वो बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं कि पीजिए, तो मेरा पूछना है कि क्या वो हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है, कैसे पता लगाएं?
0: जी धन्यवाद। ये हाइजीनिक है नहीं हाइजीनिक है ये तो उसकी जांच करके ही पता लगेगा, बाकी ये अगर वो कलर्स डाल रहे हैं और तरह की एडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। बाकी ठंडाई तो दूध में भी बनाते हैं, दूध में पानी मिला के, अगर पानी साफ़ सुथरा है तो पिया जा सकता है, काफ़ी लोग पीते भी हैं उसको, और उससे काफ़ी राहत भी मिलती है लोगों को, तो ये तो एक सेवा भाव से किया जाता है, और मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अच्छे वो लोग जो होते हैं इस तरह से करते हैं, तो इसमें कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई ऐसी वो नहीं रहता कि भाई किसी को दिक्कत आए ऐसे।
1: हाँ अगर कोई संशय है तो साथ में लेकर चलें, आपने बताया ही
0: हाँ,
1: है
0: हाँ,
1: कि चीजें साथ में रखें, और बाकी क्या प्रिकॉशंस हैं आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, ये है देवदूत पर सौलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस से लिख रहे हैं, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल होता तो और भी अच्छा लगता, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते। और हमारे पास अगला जो मैसेज आया हुआ है ये है तपोष प्रमाणिक जी पथुरिया बोंगा पश्चिम बंगाल से, डज होल्डिंग ऑनियंस इन योर हैंड रिड्यूस द चांस ऑफ हीट स्ट्रोक, इनका सवाल है।
0: नहीं ऐसा नहीं है कि अगर उसको आप हाथ में रखेंगे, या कुछ लोग पॉकेट में भी रखते हैं अनियन को या प्याज को
1: जी,
0: तो आपका हीट स्ट्रोक नहीं होगा, ये गलत धारणा है, बल्कि आप अगर पानी पियेंगे और तरल पदार्थ लेंगे और अल्कोहल और अदर बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं वो कम लेंगे, टी कॉफ़ी कम लेंगे, और जैसे हम अभी नारियल पानी की गाना चल रहा था,
1: हाँ,
0: नारियल पानी या छाछ है, ठंडाई है, या ORS घोल के भी आप, या सिर्फ सिंपल पानी ही और नमक डाल के उसमें नींबू डाल के मिला के आप अपना घर में भी एक नींबू पानी बना सकते हैं, लेमनेड, तो ये चीज़ कैरी करेंगे तो आपको क्योंकि पसीने में सोडियम सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्ट और वाटर का सेवन करना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, मतलब अगर धूप में निकल रहे हैं तो कुछ खा कर ही निकलें, ऐसा भी सच है?
0: हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होता है, धूप में एकदम से आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, यानी कि सेल का जो एक्टिविटी है वो

0: जल्दी बढ़ जाता है। तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर एनर्जी नहीं है आपके पास तो आपके बॉडी की एनर्जी वो तोड़ने लग जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे कंडीशन में, यानी कि शुगर आपका ब्लड में बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर कुछ खा के चलेंगे तो वो स्थिति नहीं रहेगी, आपके बॉडी को एनर्जी मिलता रहेगा आपके खाने से, नहीं तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उसको दिक्कत हो सकती है।
1: जी, तो बहुत सारी हिदायतें हैं हमारे पास और लगातार आपको मिलती रहेंगी। अभी हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, हालांकि हम इस विषय पर काफ़ी चर्चा बहुत देर से कर रहे हैं। रेडियो डॉक्टर के संचालनकर्ता एवं चिकित्सक जी को मेरा प्रणाम। कृपया गर्मी के मौसम में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए एवं किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन करें। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट जी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, राजकीय महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से।
0: जी, अभी जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक हमें लिक्विड की बात है, उसमें हमें खास करके अपने जो नॉन बेवरेजेस वाले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी कोला, ये सब जो होते हैं कोका कोला या फेंटा और ये सब की, और या फिर अल्कोहल हो गया है ना, इनकी सेवन कम करना चाहिए, बियर हो गया। तो इसके अलावा जैसे कि आप आजकल जगह जगह पे आप देखते हैं वाटरमेलन के फ्रूट्स भी मिलते हैं, या फिर खीरा काट के लोग बेचते हैं, वो सब भी आप जैसे उसमें भी काफ़ी पानी होता है और काफ़ी ठंडा होता है, और पानी भी पीते रहें, ORS पीते रहें, ये सब आप करेंगे तो टी कॉफ़ी आपको कम करना पड़ेगा ऐसे गर्मी के मौसम में।
1: जी, अगला सवाल हमारे पास है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से लिख रही हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह कुछ खा के भी नहीं जाते, वहाँ गर्मी होती है, उनको कैसे बचाएं? स्कूल से आते हैं तो बहुत घबराए होते हैं, उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी है?
0: जी देखिए, स्कूल में भी डायरेक्शंस जाते हैं, स्कूल्स में भी एवरी या तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी इस मुद्दे को उठा सकती है वहाँ स्कूलों में, कि बच्चों को हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक दिया जाए, सबको बोला जाए कि पानी पीना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, थर्स्टी होते हैं तभी, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होते हैं तभी पानी पीते हैं, नियमित तौर से पानी नहीं पीते हैं। तो एक वो चीज़ हो सकता है, फ्रूट्स वगैरह जो हैं आप, जैसे वाटर मेलन हैं या कुकुम्बर हैं या और अन्य जो फ्रूट्स जिसमें वाटर होता है, वो वाले आप फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हो। एक फ्रूट ब्रेक और वाटर ब्रेक का जो एक गर्मी में मेरे ख्याल से हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक तो लेना ही चाहिए, तो ऐसे चीज़ें करके गर्मी के प्रकोप से आप बच सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें अभी आपसे और भी होनी बाकी हैं, लगातार हमारे श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि कौन सा गीत सुनवाया जाए? गेंदा फूल सुनवा दिया जाए आपकी पसंद का? जी।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं बहुत ही विशेष चर्चा। गर्मी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का विशेष जो विषय है वो है हीट इमरजेंसीज, और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार जी। और आज लगातार आपको हिदायत दी जा रही है कि कैसे गर्मी में आप सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि खान पान कैसा हो, बच्चों के बारे में हमने चर्चा की। खासकर ये देखा जाता है कि जब कोई गर्मी से घर के अंदर आता है तो तुरंत ठंडा पानी पीने की कोशिश करता है, तो ऐसे में कहते हैं कि गर्मी को गर्मी मारती है। तो क्या सही होता है, चाय कॉफी का सेवन किया जाए या ठंडी चीजें ली जा सकती हैं?
2: जी, एकदम से गर्मी से आके एकदम से बिल्कुल ठंडा चिल्ड कोल्ड और आइस वाला ड्रिंक इस तरह से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गला खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाले जो ड्रिंक्स हैं, और ख़ास करके जो मैंने बताया जिसमें फिज नहीं होता है, जो ड्रिंक्स होते हैं जो आजकल इंडियन, उसमें काफ़ी जो बेवरेजेस हैं जो जिसमें फिज नहीं होता, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं होते, जैसे छाछ हो गया, ठंडाई हो गया, नींबू पानी है, या फिर अभी नारियल का पानी की बात हो रही थी, तो ये सारे जो रूह अफजा भी लोग पीते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो जिसमें बेवरेजेस कार्बोनेटेड बेवरेजेस ना हो, और जैसे कि ये कॉफ़ी और चाय या फिर अल्कोहल, इनसे भी बचना चाहिए, खास करके गर्मी में, ताकि क्योंकि इनसे ना थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा बनता है और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं,
1: होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, थोड़ा सा ये बच के रहना है। श्रोता हूँ आपको, हमारे अगले कॉलर लाइन पर आ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं सर।
3: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: सर मुझे पूछना ये है कि जो ये ORS होता है, जो BP के मरीज या शुगर के मरीज हैं वो इसको ले सकते हैं?
2: हाँ जी, ले सकते हैं इसको। ORS जो है इसमें, क्योंकि गर्मी में खास कर क्या होता है कि आपका फ्लूइड लॉस होता है, साथ में सॉल्ट भी लॉस हो रहा है आपके पसीनों में, तो ये ORS जो होता है ये आप ले सकते हैं एज अ, लेकिन जो खास करके जो जिनको हार्ट की बीमारी है, या फिर कुछ लोग जिनको बोला गया कि भाई सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है, ऑल्दो इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट तो होता ही है, और शुगर होता है इसमें, और वाटर होता है, तो ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें। खास करके कुछ एल्डरली होते हैं जो सॉल्ट का जो ऊपर नीचे से उनको दिमाग में गफलियत में जाने लग जाते हैं, तो उनको खास करके थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये लेने में कोई इशू नहीं है। ORS आप ले सकते हैं, और घर में भी आप ORS बना सकते हैं, जैसे कि 1 लीटर में आपने चम्मच, 2 चम्मच चीनी डाल के नमक, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो इस तरह से भी आप, या फिर नींबू पानी भी आजकल लोग पीते हैं, छाछ पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, या नारियल पानी, ये इस तरह के जो सेवन है आप इसको भी कर सकते हैं ORS की जगह।
1: डॉक्टर साहब, किन किन लोगों को हाई रिस्क हो सकता है इस मौसम में?
2: हाई रिस्क में देखिए, सबसे छोटे बच्चे हैं, या एल्डरली हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, या फिर जिनको बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या कैसा भी मौसम हो, और फिर उनको वहाँ पे वर्जिश, वो मतलब उनका काम ऐसा है कि उनको कसरत मतलब, या फिर उनको मेहनत का काम करना पड़ता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स हैं, या फिर जो वेंडर्स हैं, या फिर जो लेबरर्स क्लास हैं, या पुलिसकर्मी भी आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी गर्मी में उनको ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, तो ये लोग

0: इनको चांसेस हाई रहते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, बेघर होते हैं, ये लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं। और एल्डरली की बात करें तो एल्डरली तो अगर बाहर नहीं भी निकल रहे हैं, घर में हैं, तो भी उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिसिंस ले रहे होते हैं जिससे वैसे ही डिहाइड्रेशन में होते हैं, और थोड़ा सा भी और एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन हो जाए तो इनको दिक्कत आ सकती है। खास करके जो एल्डरली हैं, जो खुद नहीं चल सकते, पानी नहीं ले सकते, या बेड रिडन हैं, ऐसे लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं, क्योंकि इनको किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, वो खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बता नहीं सकते उनका डिहाइड्रेशन क्या, उनको कब प्यास लग रही है या उनको डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, वो सब वो अपना जो है वो बता नहीं पाते। तो ऐसे में वो भी बड़ी जल्दी ही, उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, तो थोड़ा सा डिक्रीज होते ही, या कभी लूज मोशन वॉमिटिंग हो गया
1: जी,
0: तो ऐसे में तुरंत वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं।
1: तो बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से ध्यान में रखनी है, जिसको डॉक्टर साहब आपको लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है सतीश कुमार जी का, रोहिणी दिल्ली से लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी में हमको कौन से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जिससे गर्मी से बचाव किया जा सके?
0: देखिए, ड्राई फ्रूट्स तो कभी भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसको इनफ वाटर ले रहे हैं ताकि वो, और ज़्यादा चीज़ तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर नियमित तौर से आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं, आपके रूटीन में बना हुआ है, तो ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको डाइजेशन के लिए उसको आप पर्याप्त मात्रा में उसको वाटर लें, क्योंकि जो प्रोटीन डाइट होता है, हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह होते हैं, उनको ज़्यादा डाइजेशन होने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में पानी का ख्याल रखें।
1: जी, अगला सवाल मैसेज के रूप में हमारे पास है संजय एम जोशी जी का, पुणे से लिख रहे हैं कि हाउ टू कीप सेफ मोबाइल इन हीट वेव्स कंडीशन एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग हॉट।
0: जी, बहुत सारे एप्लीकेशन हम चालू रखते हैं अपने फ़ोन में, और ये अच्छा कि आपको फ़ोन हेल्थ के बारे में भी आपको चिंता है। ऑफकोर्स इस ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, या वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, खास करके एसी, आप देखेंगे एसी के बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, फायर के इंसिडेंट्स आते हैं कि एसी में आग लग गया, क्योंकि वो उसका जो बाहर वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और अंदर वो कूल कर रहा है, और तो ऐसे में उसकी जो तार है, वायर्स हैं, वो काफ़ी गर्म हो जाती है। ऐसे ही फ़ोन भी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, या जैसे मान लो डैशबोर्ड पे रख दिया, आपने कार चला रहे हैं, डैशबोर्ड पे रख दिया, डैशबोर्ड पे धूप आ रही है सीधा, तो ऐसे में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो सबसे यह है कि आप उसको कूल रखें, ठंडे छाँव में रखें, तो वो गर्म, और ज़्यादा यूज़ करने से भी वो गर्म होते हैं, तो एप्लीकेशन सारे बंद कर दें जैसे, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है फ़ोन अपने आप ही विदाउट यूज़, तो फिर उसको दिखाना की ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बैटरी से रिलेटेड।
1: जी, हालांकि देखिए ये थोड़ा सा विषय से हटकर था, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने आपको मार्गदर्शन दे दिया है, क्योंकि ये तो आपने मोबाइल की जो सुरक्षा थी वो पूछ ली है, और शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मोबाइल की भी सुरक्षा का यहाँ पर जिक्र हो गया है। लेकिन हाँ, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो कि आपने सवाल किया, और जागरूक किया है हमारे श्रोताओं को भी। बहुत सारे हमारे पास जो आ रहे हैं मैसेजेस, वो लिख रहे हैं हमारे श्रोता के कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये जानना चाहते हैं के कॉम्प्लिकेशंस हैं हीट की वजह से, अगर वो देर से होते हैं तो उनको कैसे पहचाना जाए?
0: जी, कॉम्प्लिकेशन देखिए, ये मैंने बताया एक कॉन्टिन्यूम है ये, अगर आप इसको अर्ली पहचान लेंगे तो अर्ली इलाज हो जाएगा। अगर इसको नज़रअंदाज करते हैं या आप इसको पहचान नहीं पाते हैं, तो फिर ये भयावक रूप ले लेते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक में ही सीधा प्रेजेंट होगा। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि मान लो किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं हीट में, काफ़ी लोगों को ना नसें चढ़ जाती हैं, जैसे मसल्स में, जैसे आर्म्स में या लेग्स में, एकदम से बैठे बैठे या चलते हुए, या थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो मसल क्रैम्प हो गया, जिसको हम नस चढ़ना भी कहते हैं। ऐसे कंडीशन में यानी कि आपका बॉडी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है, तो ये पहचानना ज़रूरी है। फिर यूरिन का जैसे कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना,

0: इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। जब भी आप यूरिन जाएं तो ज़रूर अपना कलर देखें यूरिन का, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लेंगे कि आपको, और उसके तुरंत बाद यूरिन करके आएँ तो ज़रूर पानी पिए अगर वो डार्क है ना। या एक आजकल क्या है, एक और होता है कि ग्लास, जो ठंड में जो ग्लास रखते हैं वो छोटा रखते हैं या वो नॉर्मल होता है, लेकिन गर्मी में वो बड़ा ग्लास रखें ताकि जब भी आप पानी पिए तो कम से कम 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी पिए, तो एक बार में
1: क्वांटिटी
0: आपका।
1: भी सर कुछ होनी ज़रूरी है कि 1 लीटर पिए या 2 लीटर पिए, या
0: जी
1: कुछ रोग ऐसे भी होते हैं मैंने देखा है कि जिनमें कहा जाता है कि पानी कम पिए, तो ऐसे लोग कैसे सुरक्षा करें अपनी?
0: हाँ, देखिए जो जिनको पानी बोला जाता है, जैसे किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं, उनको सूजन पहले से ही है ना, उनको सॉल्ट
1: उनको
0: का
1: पानी
0: भी,
1: की
0: उनको
1: मात्रा
0: सॉल्ट
1: कम
0: भी
1: बताई
0: बोलते हैं
1: जाती है जी।
0: कि सॉल्ट भी उनको कम लेना है, और उनको बोला जाता है कि 1 लीटर ही आपको पानी लेना है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गर्मी में इनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि आपको इनसेंसिबल लॉसेस भी, आपके इनसेंसिबल लॉसेस मतलब जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तो आपके जो सांस आप देखेंगे तो गर्म होता है सांस, तो उसमें भी आपके लॉसेस होते हैं, यूरिन में लॉस होता है, आपके स्वेटिंग में लॉस हो रहा है, तो ये बढ़ जाता है गर्मी में। तो ऐसे में 1 लीटर के बजाय वो उसको 1.5 लीटर माना जाता है, 1.5 या 2 लीटर भी माना जाएगा। तो ऐसे में लोग जो हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि अभी गर्मी है, जैसे मैं ठंड में तो 1 लीटर से कम ले रहा था, लेकिन अभी गर्मी है, क्या मुझे 1 लीटर से कम ही लेना है या 2 लीटर तक मैं पानी ले सकता हूँ, ये अपने डॉक्टर से सलाह कर
1: परामर्श ले
0: परामर्श
1: सकते
0: करके
1: हैं जी। डॉक्टर साहब, गर्मी जनित रोगों से और किस तरह की समस्या शरीर में हो सकती है? जैसे अगर गर्मी लग जाती है तो मतलब बाकी और भी कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्या उससे?
0: जी देखिए, मैंने बताया ना, ये जो है पूरे बॉडी में इफ़ेक्ट करता है जो गर्मी है ना, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे बात करें तो ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है ये, क्योंकि जो है जो आपका जो सोचने की क्षमता है, फिर इसमें मैंने बताया कि कोमा में चला जाता है या फिर चक्कर आने लग जाते हैं, फिर पेट में जैसे नौजिया वॉमिटिंग या उल्टियाँ आने लग जाती है, हार्ट में भी समस्या आ सकती है, जैसे कि हार्ट सही ढंग से काम नहीं करेगा या एबनॉर्मल वे में जो रेगुलर बीट है वो रेगुलर बीट ना होके इरेगुलर बीट में
1: जी
0: कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह किडनी में भी असर होता है, तो किडनी भी आपके शट डाउन होने के चांसेस रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सोडियम का ऊपर नीचे होता है, ग्लूकोज आपका नीचे चला जाता है, तो इस तरह से फिर मांसपेशियों में जो होता है
1: जकड़न हो
0: जकड़न
1: जाती है।
0: होती है, ऐंठन हो जाती है या नस चढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपको जो पूरे बॉडी में जो
1: कभी
0: सेल्स हैं।
1: कभी सर ये भी देखा जाता है कि सर्दी भी लोगों को लगने लगती है, जब उनको लू लग जाती है तो उसकी वजह से ये भी समस्या होती है, तो ये कैसे बचा जाए इन चीज़ों से?
0: जब अगर कंपन होने लग जाए आपको, तो ये इसका मतलब यह है कि बॉडी और हीट बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये तब होता है जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो लू लगते हैं उसको हम क्या करते हैं कि टब में, हॉस्पिटल में एक टब होता है, उसमें हम ठंडा पानी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको आइस वाटर बाथ देते हैं,
1: जी
0: ताकि टेम्परेचर जो इनका जनरली 106, 107, 108 जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको तुरंत हम 102 तक ला सकें, जो कि हाफ एन आवर में हमें लेके आना होता है।
1: जी
0: तो ऐसे में अगर जैसे टेम्परेचर एकदम से नीचे ला रहे हैं तो उनको ठंड लगने की यानी कंपन होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में हम एक दवा देते हैं, इंजेक्शन होता है मिडाजोलम, वो हम देते हैं और ताकि उसका कंपन दूर हो जाए, और फिर हम उसको जैसे ही 102 तक आता है टेम्परेचर उसको हम टब से बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम उसको नॉर्मल एयर ड्राई या स्प्रिंकलिंग और एयर ड्राई से हम उसको धीरे फिर धीरे धीरे हम पहले हम तेज़ी से लाते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई वगैरह हैं वो कंबल ओढ़ के भी गर्मी में इसलिए काम करते हैं कि उनको हीट वेव्स का असर ना हो, तो क्या कहीं ये ऐसा पहनावा ज़रूरी है कि अगर थोड़े भारी कपड़े पहने, जैसे कि हमने आपसे सुना कि हल्के कपड़े पहने, तो वो क्या रीज़न होता है?
0: देखिए, कभी भी डार्क गहरे रंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और कंबल तो खैर आपका जो इवेपोरेशन है वो नहीं होने देगा, तो आपको क्या होता है कि ये बेसिकली आपको इवेपोरेशन होना चाहिए, यानी कि जो हीट है जब उसमें क्या होता है, जो तापमान है आपके बॉडी का वो ठंडा तब होता है जब आपका जो भाप बनती है, आपका जो स्वेट है वो भाप बनता है, तो नीचे वो त्वचा को वो ठंडक पहुंचाता है, तो ऐसे कोई भी कपड़ा पहनेंगे जिससे कि बहुत

0: कपड़ा है या कंबल ओढ़ रखा है या कुछ ऐसे है, तो वो इवेपोरेशन आपका होगा नहीं। और सबसे ज़्यादा जो हमारा हीट लॉस होता है वो इवेपोरेशन से होता है और रेडिएशन से होता है हमारा, और कन्वेक्शन से भी होता है, जो एयर आती है ठंडा हमें लेके जाती है बॉडी का, और कंडक्शन से भी हीट लॉस होता है। तो ये चार मैकेनिज्म होते हैं कि एक तो जो भाप बन के उड़ता है, जो हवा लगती है हमें उस पर, और जो जो रेडिएशन हीट का होता है, यानी कि वो अपने आप ही वो बाहर निकल रहा है हीट। तो ये सारे जो कंडीशन से ही हमारा, तो ऐसे कंडीशन कोई भी सिस्टम, अगर कोई भी चीज़ जो इनको रुकावट पैदा करती है, तो वो हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा देती है।
1: तो श्रोताओ, आज हम बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी से किस तरह की समस्या हो सकती है और आपको कैसे बचाव करना चाहिए, और अगर बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, तो किस तरह की खास तौर पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और आप स्कूल गोइंग है तो भी आपको बहुत ही हिदायत दी जा रही है कि किस तरह से आप सावधान रहें, क्योंकि कुछ घंटे होते हैं जिनमें सावधान रहने की बड़ी ज़रूरत होती है। जो गर्मी का समय होता है, दोपहर का जो समय होता है, उससे बचें, डॉक्टर साहब ने आपको ऐसा बताया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत होती है, और आपने बताया कि हीट वेव्स का जो समय होता है जब डिक्लेयर हो जाता है, तो बहुत सुरक्षा की ज़रूरत होती है। ऐसे में पर्टिकुलर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, अगर वो स्कूल गोइंग हैं, तो किस तरह का उनका खान पान हो कि सुबह वो ब्रेकफास्ट करके निकलें, या बीच में कुछ सावधानी रखने के तौर पर कुछ वो एनर्जिक चीज़ें ले सकें, ऐसा कुछ बताएं।
0: हाँ जी, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि तरल पदार्थ आप लें, और कभी भी बिना खाए नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कि वाटर बॉटल जो होता है, आजकल एक के बजाय दो वाटर बॉटल आप दे सकते हैं, या पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा वाटर बॉटल दे सकते हैं। और ख़ास करके अगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, तो वहाँ पर भी ये, और वैसे भी उनके पास इन्फॉर्मेशन जाता ही है कि बीच बीच में वो एक ऐसा वाटर ब्रेक करते हैं, जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि पानी आपको कंपलसरी पीना है अपने उससे, और बच्चों को भी जब वो आएं बच्चे वापस, तो देखें कि कितना पानी पिया है, है ना। अगली बार आप लिख भी सकते हैं उनके जो उनकी कॉपी में, या फिर उनका जो डायरी होता है उस पर आप लिख सकते हैं कि बच्चा पानी नहीं पी रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपस में मिलके टीचर से, प्रिंसिपल से, तो बच्चों का थोड़ा सा बिहेवियर, क्योंकि बच्चे तो कभी पानी पीते नहीं हैं जब तक उनको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। तो ऐसे कंडीशन में, और जैसे कि मैंने बताया कि कपड़े थोड़े से जो हैं, वैसे भी आजकल जो स्कूल्स हैं आप देखते होंगे कि ठंड के कपड़े अलग होते हैं यूनिफॉर्म, और गर्मी के वो उसी हिसाब से गर्मी के यूनिफॉर्म होते हैं। तो और जैसे छतरी मैंने बताया, छाता या कोई कैप, ये सब आप देखें
1: जरूर। हाँ, सावधानी के तौर पर साथ में रखें। आगे बहुत सारे आपसे सवाल हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार, मैं उत्तराखंड से दादा गोविंद सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: जी
0: नमस्कार, जी
1: स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है।
2: जैसे सफर में जाते हैं तो ये बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं पानी की जगह में, वो कोल्ड ड्रिंक पीने की मांग करते हैं ठंड में, वो गर्मी में, तो और वो जो पानी की जो बोतलें मिलते हैं उनसे प्यास बुझती नहीं, तो क्या ये ठीक है कोल्ड ड्रिंक?
0: हाँ जी, अभी हम एक आधा घंटे से यही डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ड्रिंक्स होते हैं, ये अवॉइड करना है। ये बिल्कुल सही नहीं होता है। माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा नहीं सेवन करना है। अगर एक आध बार है, लेकिन ये अगर पूरे तरह से आपने पानी को ही रिप्लेस कर दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक से, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको बीच बीच में नॉर्मल पानी भी पीना है। आपको छाछ भी पी सकते हैं, ठंडाई पी सकते हैं, आप ORS भी ले सकते हैं बीच में। तो ये सब चीज़ आपको, नींबू का पानी जैसे हो गया, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ लेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये पूरी तरह से अवॉइड करें।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा।

0: तो श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हीट इमरजेंसीज पर है कि गर्मी से आपको किस तरह की समस्या हो सकती है, अगर हो गई है तो कैसे सावधान होकर उसका उपचार करें। डॉक्टर साहब लगातार आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहा जाता है कि 107 108 तक टेम्परेचर हो जाता है, कि आपके पास ऐसा कोई केस आया है और वो आपको लगा है कि क्योरेबल रहा?
1: जी देखिए, इसमें 109 110 भी पहुंच जाता है। इतना हाई टेम्परेचर से क्या होता है, सारे बॉडी के सेल्स हैं डैमेज मोड में चले जाते हैं, सारे जो हीट की वजह से वो डैमेज होने लग जाते हैं। हमारे जो दिमाग में एक मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है जिसमें वो थर्मोस्टेट होता है हमारे पूरे बॉडी के हीट से रिलेटेड। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, ये थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है, तो आपको पसीना आना बंद हो जाएगा। जब पसीना आना बंद हो गया तो आपका टेम्परेचर बॉडी का एकदम से राइज होने लग जाता है। और हमने देखा है कि लास्ट ईयर ही 109.4 डिग्री सेंटीग्रेड का एक नौजवान जो कि स्लीपर क्लास में ट्रेन में एक पूरे 24 घंटे का सफ़र करके ऊपर वाली बर्थ पे सोता हुआ अकेला आया था, और जब दिल्ली में आया तो उसको उल्टियाँ होने लग गई और वो गफलियत में चला गया। जब हमारे पास आया तो वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब बेहोशी हालत में था, और हमें उसको यहाँ तक कि उसको मशीन पे डालना पड़ा, और तुरंत हमने उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए टब में डाल के उसका आइस कोल्ड वाटर में टब में उसको गर्दन से नीचे उसको हम गर्दन ऊपर रखते हैं और उसको हमने टेम्परेचर एकदम से कम किया, और वो दो हफ्ते तक रहा हमारे पास, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा होके गया, चल के गया वापस।
0: तो मुझे लगता है कि जिनको इस तरह की समस्या है वो थोड़ा सा आशान्वित हो गए होंगे कि अगर ये समस्या है तो वो ठीक हो जाएंगे, जैसा कि आपने बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। डॉक्टर साहब, अगर मेडिसिन की बात करें तो किस तरह से ये माना जाए कि इस स्थिति में मेडिसिन सहायक हो सकती है?
1: देखिए, इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स है नहीं, बल्कि जबकि ये टेम्परेचर आपका 106 7 8 9 जा रहा है तो ऐसे में लोग सोचेंगे कि पैरासीटामोल दे दें, तो ऐसा पैरासीटामोल देने से टेम्परेचर कम नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम है वो थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है। थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो गया है। थर्मोस्टेट जब तक काम करता रहता है, और आपको मान लो कोई पायरोजेन से है ना, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस या कुछ है, तो ऐसे कंडीशन में आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हीट स्ट्रोक में पैरासीटामोल काम नहीं करता है, और कोई भी मेडिसिंस उसको टेम्परेचर को काम नीचे लाने के लिए हमारे पास है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हवा और पानी का छिड़काव, और जहाँ हो सके हीट स्ट्रोक में तो सिर्फ वो भी काम नहीं करता है। अगर हीट स्ट्रोक की बात करें तो अगर आप सिर्फ हवा कर रहे हैं और पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो वो फील्ड में ठीक है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो भी काम करना मतलब वो टेम्परेचर कम करता है, नो डाउट, बट जितना जल्दी से हमें उसको टेम्परेचर कम करना है वो नहीं कर पाता है, उसमें बहुत समय लगता है। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है कि टब में उसको डाल के जो एक आइस वाटर बाथ जो होता है, अगर आपके पास आइस नहीं भी है तो भी आप ठंडे पानी में, अगर जैसे नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर वाला पानी है, ये गर्म टंकी का पानी नहीं होना चाहिए
0: जी।
1: तो ऐसे पानी में भी अगर आप डिप कर दें उसको, है ना, तो ये है कि भाई उसका जो नाक है मुंह है ऊपर रहना चाहिए, और उसको आप जैसे हॉस्पिटल में हम लोग का तो यही ट्रीटमेंट होता है, और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। जैसे मान लो शिवरिंग होती है, मैंने बताया था कि मिडाजोल में एक दवा होती है हम देते हैं, और जैसे अगर दौरे पड़ रहे हैं तो दौरे की हम दवा देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हीट स्ट्रोक के लिए कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो हम देते हैं
0: कंट्रोल किया।
1: हाँ, तो इसका बस वही है कि आपको बचाव है, और ज़्यादा होने पे आप जैसे इसमें आईवी फ्रूट्स देते हैं हम लोग, या जो क्योंकि इसमें ऑफकोर्स सोडियम की कमी होती है और ये होता है, तो आईवी फ्रूट्स देते हैं। अगर शुगर कम है तो शुगर का हम उसका डेक्सट्रोज हम शुगर का ड्रिंक वो देते हैं,
0: ट्रीटमेंट दिया जाता है जी। हीट एग्जॉशन क्या होता है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, हीट एग्जॉशन एक वो स्थिति है जैसे इसमें जो थर्मोस्टेट है आपका, जैसे हीट स्ट्रोक में थर्मोस्टेट पूरा काम करना बंद कर देता है, यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, थर्मोस्टेट में गड़बड़ी आना चालू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको स्वेटिंग हो रही होती है लेकिन आपको चक्कर आने लग जाएंगे, गफलियत में की स्थिति में आप धीरे धीरे आप जाने लग गए हैं, है ना, जो आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लग गया है ना, लेकिन अभी भी आपको स्वेटिंग जारी है। स्वेटिंग हीट स्ट्रोक में बिल्कुल स्वेटिंग बंद हो जाता है ना, स्वेटिंग बंद हो जाएगा।

0: लेकिन हीट एग्जॉशन अभी जारी है। तो ये एक हीट स्ट्रोक से पहली वाली स्थिति है जहाँ पे आपको ये मतलब आपको हीट स्ट्रोक के तरफ ले जाने वाली स्थिति में ये आप जा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इलाज करें हम लोग तो हीट स्ट्रोक पैदा नहीं होगी और हम इसको अच्छा रिस्पॉन्स मतलब किसी को भी हम बचा सकते हैं।
1: जी, यानी समय पर अगर हम जागरूक हो जाएं इस स्थिति में तो बचाया जा सकता है उस स्थिति को आने से जो कि बहुत ही भयावह हो सकती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जिनमें डेथ तक हो जाती है, थोड़ा सा जागरूक कर दें लोगों को। 50-70%
0: मोर्टेलिटी है, यानी कि 100 में से 50-70 मरीज जो है डिस्पाइट एडिक्वेट ट्रीटमेंट, हाँ एडिक्वेट ट्रीटमेंट के बाद भी, ये डाटा जो है वेस्टर्न का है, तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है, इसलिए इसको स्ट्रोक कहा गया है। क्योंकि जो ऐसे आप ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, उसकी भी मोर्टेलिटी काफ़ी होती है
1: जी।
0: जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है, तो उसी तरह से हीट स्ट्रोक कहा गया है इसको
1: जी। तो श्रोताओं, मैं समझ पा रही हूँ कि आप भी बहुत ही सचेत हो गए होंगे, क्योंकि बहुत हल्के में ना लें कि गर्मी का मौसम है, आप किसी तरह से भी निकल जाएं, आपको काम है, लेकिन आपको निकलना कैसे है ये डॉक्टर साहब ने आज आपको जागरूक किया है कि आपको किस स्थिति में निकलना है, क्या प्रिकॉशन लेके निकलना है। जाना तो ज़रूरी है, लेकिन जाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको बड़े जागरूक रहना है। डॉक्टर साहब और क्या कहना चाहेंगे?
0: एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि अच्छा। आप ना जैसे रेडियो सुनते रहें, रेडियो पे जानकारी मिलते रहती है, हीट वेव कब घोषणा हुई है, या न्यूज़पेपर में ये जानकारी, या सोशल मीडिया पे भी आजकल आ जाता है ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, तो इस तरह के जो अलर्ट आपने क्षेत्रीय अलर्ट है ना, उसको आप कर सकते हैं। सचेत ऐप है, वो आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, जो सचेत ऐप है, वो भी आप डाउनलोड करके उसमें भी आपको मौसम की जानकारी या कोई भी वार्निंग होता है तो वो आपको मिलता रहता है वहाँ से
1: जी। तो श्रोताओं, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से मिल गई होगी और आपने बहुत कुछ नोट डाउन कर लिया होगा और जीवन में इसको अपना लीजिए, क्योंकि गर्मियां तो हर साल आती हैं, आपको हर साल हम सचेत भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल लापरवाह मत होइए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को आपने बहुत गौर से सुना होगा और इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपको बता दें कि हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की हीट इमरजेंसीज पर। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब आपसे बस इतना कहूंगी कि अब दीजिए इजाजत, अनुराधा को नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

तो स्वागत है। सो इस शो दे विच असीं मजेदार गल्लां बातां करन वाले हां ते अज दा टॉपिक है जी धुप। ठीक है जी, ते अपनी जिहड़ी तैयारी तो ही खिंच लो। इस शो दे विच असीं तुहानूं टंग ट्विस्टर्स भी पुछांगे। अच्छा, जिहड़े टंग ट्विस्टर दा सही जवाब देणगे यानी कि टंग ट्विस्ट घट्टो घट्ट 5 वारी बोलणगे ते उहनां दी जिहड़ी फरमाइश जिहड़ी है ना ओह पूरी कीती जाऊगी। ते फरमाइश करन लई तुसीं नंबर नोट कर लो 0181 23 42 174। इक इक करके बोलदा जी, 0 यानी कि 0 1 8 1 2 3 4 2 1 7 4। ते अंग्रेजी च बोलदे हां जी 0 1 8 1 2 3 4 2 1 7 4। ते फटाफट तुसी अपने जिहड़े आ ना नंबर घुमाने शुरू कर दो ते असी तुहाडी वेट कर रहे हां। ते इस शो दे विच असी खूब सारे मजे करांगे ते धुप दे रिलेटेड आपां गल्लां बातां करांगे ते नाल दे नाल टंग ट्विस्टर बड़े मजेदार ने ते ओह वी असी तुहाडे को 5 वारी जरूर बुलवावांगे। तो उस तों पहलां मैं कहा जी गाना सुनते हैं, बड़ा ही मजेदार है। आ जाओ फिर स्टे।

102 7 मेगाहर्ट्ज से स्वागत है जी, वेलकम बैक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आरजे जोरावर सिंह लेके हाजिर हां तुहाडे लई तुहाडा अपना प्यारा शो जिहदा नाम है जी हैलो जलंधर। ते हैलो जलंधर, की हाल चाल है? कल्ला जलंधर नहीं, साड़ी फ्रीकुएंसी पूरे देश विच जा रही है और ईवन दैन बाहरले देशां च भी जा रही है। सो सारयां दा एक बारी फिर

0: हाँ जी, क्या बात है जी। बचा दे विच ही बचाया जी, बचा हो गया, शुक्र है बचा हो गया। ते लो जी, साडे नाल पतवंते सज्जन जिहड़े आ ना साडे नाल जुड़ गए ने, स्रोते जुड़ गए ने। ते नंबर एक वारी फिर भी नोट कर लो तुसी, 0181-23-42-174 ते लो जी आपां तुहाड़ी गलबात कराउने आ। ते नाल बड़े मजेदार अहीं टंग ट्विस्टर भी पुछांगे। टंग ट्विस्टर मेरे तो बहुत ने, खूब सारे ने। ते लो जी आपां लैने आ जी उहनां नूं फोन कॉल, ते देखदे आ जी कौन सज्जन साडे नाल जुड़े ने। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ,
0: ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ?

0: क्या बात है करमजीत अनमोल जी ने क्या खूबसूरत तरीके दे नाल गाया है गाना। तो वाकई वो ना पंजाबी बंदे ही जिहड़े बेफिक्रे जे आ, है ना। तो बेफिक्री जी साडियां ट्यून्स ने साडियां जिन्नियां असी कंपोजिशंस भी करते हैं पंजाबी, तो साडियां कंपोजिशंस दे विच ना बेफिक्री आ। तो लो जी वेलकम बैक है जी 102.7 मेगा हर्ट्स ते आकाशवाणी दा ये रेनबो चैनल है। तो तुसी अपना शो जिहड़ा सुन रहे हो जिहदा नाम है हैलो जलंधर, ते हैलो हैलो असी सारे नाल कर रहे हैं। तो अगले सज्जन साडे नाल जुड़ चुके ने, ते आओ जानते हैं जी वो सज्जन जी का नाम की है जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल,
0: की हाल चाल, की नाम है जी तुहाडा?
1: मेरा नाम संदीप सिंह, अमृतसर तो बोल रहे।
0: हाँ अमृतसर साहब तो बोल रहे हो कुलजीत सिंह जी। वाह जी वाह महाराज जी, अजकल गर्मी बड़ी पै रही है।
1: गर्मी बहुत ज्यादा।
0: हाँ ते गर्मी तो बचने वास्ते फिर तुसी की करदे हो?
1: गर्मी तो वैसे ते घर दे कहंदे भी तां मैनू गर्मी घट ही लगदी है क्योंकि मेरा काम ही गर्मी च हैगा।
0: ओ अच्छा, काहदा काम है तुहाडा?
1: काम मेरा हैगा रंगाई दा, मैं ते मेरा लला रही हां।
0: हाँ क्या बात है, ललारियां दे ते गाने भी बड़े बने हुए हैं।
1: पट्टी पट्टी अगे काम करी दा।
0: वाह वाह चुन्नी रंग ते ललारिया वे। महाराज तुसी तां मशहूर ही बड़े हो, सारी इंडस्ट्री दे विच तुहाडे गाने चलन दे। वाह वाह, ते वैसे वाकई गल बिलकुल ठीक है जी। बंदा जिहड़ा है ना जदों धुप विच काम करदा ते स्ट्रोंग हो जांदा है, ते फिर धुप भी उन्हें कुछ बहुता कहती नहीं, पर फिर भी कितने कितने तुम धुप तो बचने वास्ते कुछ इदा का जिदा ड्रिंक्स वगैरह चेंज हो जाते ना, जिदा आप चाह ते जोर लाया हों कि इदा का नहीं, सवेरे चाह दोपहरे चाह शाम भी चाह तो सौन लग्या भी चाह।
1: अजकल बना दें कंजी बना लें।
0: हाँ सही है जी सही
1: है।
0: तुम इन गल की तो मेरा ही शिकंजवी पीने का दिल घर आया।
1: गर्मी से बचने नींबू पानी
0: प्रियादीप कौर खालसा कॉलेज पढ़ के हटे ने, संघा प्रभजोत सिंह संघा होर भी मेरे बड़े सारे दोस्त ने उत्थे रहिंदे, बड़ा ही मजा आंदा जदों असीं जाईदा, और कलाकार ने सारे लोग। मैं उदों ही जदों नवां नवां गया तो इन्नी उन्होंने प्रौहणचारी की, मतलब इन्नी प्रौहणचारी मैं होर कितने नहीं वेखी जिनी अमृतसर साहब वाले की वेखी है। क्या बात है, क्या बात है जी, बड़ी खुशी होंगी। अच्छा एक चीज मैंने दसो कि गाना कड़ा सुनोगे तुसी? देखा है साजन की आंखों में प्यार। एक चीज और मैंने दसो, गाना तो अं तुम सुना देंगे पर तुसी सानू एक टंग ट्विस्टर जरूर सुनाओ। रोज मतलब चलो कदी कदी दिन दून छड़ के भी खा लेना चाहिए पपीता, ते पपीते दे उत्ते है जी।
1: पपीता शेक भी बहुत मिलता
0: है। हाँ वैसे तो सियाने कहंदे कि पपीते च दूध नहीं पाउणा चाहिए, पर किसे वेले चली जांदा पंजाबी केड़ा कोई नींद विचार कर दे। मैं तो खुद कई वेले हैरान हो जाना कई पंजाबी साडे एडे चढ़दी कला ले आ, उह चाह दे नाल कुल्फी खाई जांदे। ते लाओ जी तुहाडे वास्ते टंग ट्विस्टर तैयार, और तैयार है ते टंग ट्विस्टर है जी, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ये पांजरी बोलना जी।
1: पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
0: हाँ।
1: पीतल के पपी
0: कोई नहीं चलो चलो कैरी ऑन। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
1: पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
0: हाँ।
1: पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
0: हाँ।
1: पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हो गया ये पंजाबी।
0: क्या बात है जी, ताड़ियां। बहुत वधिया बहुत वधिया। ये भी कोई कोई बोल पाता, मैं तो हैरान हाँ साडे सरोते एडे कमाल दे। एक मैं पहला टंग ट्विस्टर पाया उहदा उह इदा सीगा कि चिट्टा डड्डू वट टप्पे वट टप चिट्टे डड्डूआ। ये मतलब मैं बड़े जणे को पुछया ते किसे को बोल नहीं आया, पर इत्थे साडे जिहड़े सज्जन सी उन्होंने बोल दिता, ते तुसी भी सरोते कमाल दे ही हो वैसे साहब जी।

0: तुसी भी बड़ी जल्दी बोल देता, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के
1: एक
0: पतीले
1: बार
0: में
1: ही हो गया
0: पपीता पीला
1: इंटर
0: पीला।
1: दोबारा।
0: बहुत वधिया जी, बड़ा अच्छा लग्या जी तुहाडे नाल गलबात करके, साडे ललारी साहब। ते वेखो जी, धुप्प च वी तुसी किन्ना कमाल दा काम कर सकदे हो, ते इह सानू सिखण दी लोड़ आ। साडे जिहड़े फोन कॉल ते जुड़े ने साहब जी, ते बड़ी बहुत अच्छा लग्गिया तुहाडे नाल गलबात करके। ते आओ फिर असीं तुहाडा फेवरेट सोंग जिहड़ा है ना तुहानूं सुणाउने आ, ते तुसीं इस सोंग नूं वी खूब इंजॉय करो। ते वेखो तुहानूं हज़ारां नहीं लखां नहीं करोड़ां लोकां ने सुणिया, क्योंकि 102.7 मेगा हर्ट्स की फ्रीकुएंसी पूरे इंडिया नहीं, इंडिया तो बाहर तक भी जाती है।
1: छोरे भी सुनते है।
0: हाय सही है जी, उन्हां नूं भी सत श्री अकाल है जी, प्यार भरी। हाँ नहीं कमाल करती जी, तुसी तां बड़ा सोहना बोलिया। ते बस एक वारी पपीता थोड़ा जिहा पतीले च डिग पिया ही। सही है जी, आ सही गल है, ललारियां दा काम पतीले च ही हुंदा, तां ही करके अच्छा, तां ही करके तुसी बहुत वधिया कीता। वाह वाह क्या बात है, तो ही प्रोनाउंस अच्छा आया। सो बहुत अच्छा लगे जी तुहाडे नाल गलबात करके। तो तुम हुण सुनो जी अपना जिहड़ा फरमाइशी गाणा, तो आरजे जोरावर सिंह इस तरीके नाल तुहाडे रूबरू हुंदा रहेगा, तुहाडे नाल गलबात करता रहेगा, क्योंकि देखो जी सारी कनैक्टिविटी की गलबात है। तो लो जी सुनो फिर तुम अपना फेवरेट सोंग।

0: हाँ जी दोस्तों, ते असी अगली खबर तुहानू कहा सी कि लैके आवांगे IPL तो। ते असी सारे जानते हैं कि IPL का जिहड़ा सीजन आ वो चल रहा है। ते हुण IPL तकरीबन अपने फाइनल मैच तक पहुँचता जा रहा है। ते अज 26 मई नू धर्मशाला विच RCB वर्सिस GT यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अते गुजरात टाइटन्स विच मुकाबला होने वाला है। ते देखते हैं कि अज इन्हां विचों कौन बदी लैके जांदा।
1: जी बहुत ही इंट्रस्टिंग गल है, बहुत ही इंट्रस्टिंग मैच होने वाला है। दोवें टीमां अपनियां पूरी जान लगा देंगी कि ओह क्वार्टर फाइनल दे विच जरूर पहुंचिए।
0: ते उस तो बाद जिहड़ा दूजा क्वालीफायर मैच होना आ वह 29 मई नूं होना आ न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम दे विच। ते उस तो बाद फाइनल खेडिया जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद विच 31 मई नूं। ते काव्या तुहानूं की लगदा है कि अज दा जिहड़ा मैच आ ओह कौन जितूंगा?
1: देखो सारिआं दी अपनी अपनी फेवरेट टीम हुंदी है, मेरा तो सपोर्ट दोवें टीम्स नूं है।
0: अच्छा।
1: बट मेरी पर्सनल फेवरेट इस वेले RCB ही है। RCB ने पिछली बारी बहुत ही सालों बाद IPL दा कप जित्तिया, ते मैं इस बारी उम्मीद कर रही हूँ कि RCB दी परफॉर्मेंस बहुत ही वधिया रही। RCB ने पहला शुरुआत पॉइंट

0: टेबल दे काफ़ी
1: जी
0: थल्लियों कीती सीगी।
1: जी जी
0: उस तो
1: जी
0: बाद बहुत ही वधिया कमबैक कीता आरसीबी ने, हौली हौली ऊपर आए ने, ते उन्होंने लगातार मैचेस भी कई जितते ने। बट लगातार मैचेस दे जित तो बाद मैनू एक होर टीम दा ख्याल आ रहा है,
1: हाँ जी, हाँ जी, दसो।
0: ललित थर्डी पंजाब टीम दा। देखो पंजाब ने बहुत ही वधिया परफॉर्मेंस दी, मतलब लाजवाब, मतलब चश्मे बदूर
1: जी
0: क्या बात परफॉर्मेंस सी।
1: जी
0: शुरुआती उन्होंने लगातार अपने मैचेस जीते ने, बट जिवें तुसी जानते हो कि जिंदगी जिवें जिन्ना उत्ते लेके जाती है वापस सानू
1: आ
0: थल्ले
1: जाती है,
0: जरूर
1: थल्ले
0: आना
1: आ जाती है।
0: पैंदा।
1: जी,
0: तो पंजाब नूं लगातार फिर हार देखनी पई, ते लगातार मैचेस आईपीएल दे विच पंजाब किंग्स हारे ने। ते उस तो बाद जिहड़ा लास्ट मैच होया है उन्होंने बहुत ही वधिया तरीके नाल जित्ते, मतलब लास्ट सिक्स जो मारिया है साडे पंजाब दे कैप्टन ने,
1: जी
0: मैनू बहुत ही वधिया पसंद है, बहुत ही वधिया लगा सी। मैं पूरे अपने कुर्सी दे एज ते बह के देख रही सी कि
1: अच्छा
0: ओ पंजाब जित जाए किसे ना किसे तरीके नाल,
1: जी,
0: भावें साडे को मार्जिन काफ़ी वड्डा सीगा उस समय,
1: जी
0: ते बहुत ही आराम नाल जित गई सी। ते असी मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए कि हूँ हाँ, पंजाब हुन 5वें नंबर तो 4थे नंबर ते आ गई है, क्योंकि उन्होंने अपना मैच जित लिया पॉइंट टेबल ते उत्ते आ गए ने, ते वो क्वालिफाई कर गए। बट की कर सकते हैं, साडे पंजाब जिन्नी मेहनत की है इस बारी साडे मुकद्दर च नहीं होएगी, बट एक ना एक दिन असी ट्रॉफी जरूर जितांगे। ते एक दूसरी टीम ने जित के पंजाब में थल्ले कर दिता है, ते हुन पंजाब क्वालिफाई नहीं कर रही
1: हाँ
0: दोस्तों।
1: नहीं, चलो कोई गल नहीं, हार जीत तो चलो जिंदगी का सिलसिला ही आ, है ना, इदा हुंदा ही रहिंदा। पर तुसी दिल नहीं थोड़ा करना, तुसी बहुत ना ज्यादा, मैनूं लगदा उदास हो गए
0: नहीं
1: हैं।
0: नहीं मैं उदास नहीं होगी, बट मैनूं थोड़ा जा बुरा लगा सी कि
1: हाँ नहीं
0: पंजाब दी
1: नहीं
0: टीम
1: बिल्कुल,
0: नूं काफ़ी
1: हर
0: सपोर्ट
1: जी
0: करदे
1: जी
0: हैं
1: हर एक
0: असी।
1: नूं लगदा है ना,
0: जी
1: हर हर पंजाबी नूं लगा होगा,
0: जी
1: क्योंकि असीं सारे जाने इन्ने ज्यादा चाह नाल देखते हैं ना, असीं हर एक कोई चाहुंदा है कि साडी टीम जितते, है ना।
0: जी
1: तो
0: ते इस समय पॉइंट टेबल दा स्टेटस तुहानू दस दिए, सब तो पहली पोजीशन ते आरसीबी बन चुकी है। आरसीबी भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है, ते उन्होंने 14 मैचेस जीते ने, ते उस दे विच 9 जीते ते 5 हारे हैं, ते उन्होंने 18 पॉइंट्स ने। ते उस तो बाद गुजरात टाइटन्स ने भी 14 मैचेस जीते ने, 9 हारे 5 जीते, ते उन्होंने भी पॉइंट्स 18 ने, बराबरी ते चल रहे ने। उस तो बाद SRH ते RR भी 14 मैचेस 9 जीते, बट RR 8 जीते ने, ते उन्होंने 6 हारे ने। ते इस समय पॉइंट्स दी काफ़ी मतलब ना मार्जिन काफ़ी घट है, ते कोई
1: जी
0: भी उत्ते थल्ले जा सकता है।
1: जी
0: हुन मैच जितने दे नाल तुहानू 2 पॉइंट मिलने ने, ते हार दे नाल 0। ते हुन RCB दे मेन प्लेयर्स जेहड़े है विराट कोहली इस बारी, रजत पट्टीदार ते जॉश हेजलवुड परफॉर्म कर रहे ने चंगी तरह नाल। गुजरात टाइटन विच शुभमन गिल दी परफॉर्मेंस, बॉलर्स विच मोहम्मद सिराज दी परफॉर्मेंस बहुत वधिया देखने नू मिल रही है। सनराइजर्स हैदराबाद दे विच ट्रैविस हेड, पैट कमिंस वर्गे एग्रेसिव बैटर्स दी बहुत वधिया परफॉर्मेंस चल रही है। राजस्थान रॉयल्स विच संजू सैमसन ते जसवाल जी दी बहुत ही वधिया परफॉर्मेंस है। ते इस वारी असी उम्मीद कर रहे हैं कि जेहड़ा क्वालिफायर अज हो रहा है, जो जितेगा वो डायरेक्ट फिनाले विच जाएगा, ते जो इस वारी हारेगा इस मैच विच जो धर्मशाला विच हो रहा है, वो क्वालिफायर 2 दे विच जाएगा। चलो असी विश करते हैं कि जेहड़ा अज दा मैच है ओहो फिनाले विच सानू अपना पहला फिनाले दी टीम अज दे मैच तो मिलेगी। ते तुसी जरूर देखियो अज दा मैच RCB वर्सेस GT। असी तुहाडे लई लास्ट खबर एक होर लेके आवांगे, उस तो बाद फिर गल्ला होर करेंगे। तद तक तुसी ये गाना इंजॉय करो, मैं तो ललित ये गाना इंजॉय करते तुहाडे लई।

0: वेलकम बैक टू द शो। यो बाणी तुसीं सुन रहे हो 102.7 FM बैंड ते आकाशवाणी जलंधर दा एक केंद्र है। ते हुण समा आ चुका है तुहाडे तों इजाजत लैण दा। असीं अज गल्लां बातां बहुत ही चिर बाद कीतियां स्पोर्ट्स न्यूज़ दी ते IPL दी गल्लां कीतियां। चलो असीं उम्मीद करदे हां कि अज दा जिहड़ा मैच होएगा तुसीं जरूर देखोगे। ते गर्मी दी गल कर रहे सीगे ते गर्मी विच तुसीं अपना चंगी तरह ध्यान रखोगे, पानी, शिकंजवी, छाछ जो भी है लस्सी दब के पियो, भावें मिठी पियो भावें नमकीन पियो, मैं नमकीन पसंद है। तो तुसी अपने पानी का कंटेंट ते नमक जरूर लेना है, अपना सिर मत्था ढक के जरूर निकलना है।
1: तो दोस्तों हुण समा हो गया है तुहाडे तों इजाजत लैण दा। मैनू आरजे ललित नू
0: ते मैनू आरजे काव्या नू
1: दिओ इजाजत।
0: नमस्कार।

वेलकम बैक, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आरजे जोरावर सिंह इज हियर 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है जिथे गल दिल दी दिल तक हुंदी है जी। मैं क्या जी तुहाडा फेवरेट शो लैके असी हाजिर हां। वैसे तो फेवरेट तुहाडे सारे ही ने, पर जिथे असी आ जाइए वह भी फेवरेट बन जाता। क्या बात है, अपने मूँह मियाँ मिठू कदी कदी हो जाना चाहिए। वैसे ना जिंदगी दे विच हमेशा तुहानू ना जिंदाबाद तरीके दे इरादियां नाल जींदे रहना चाहिए। वैसे एवं नहीं बजुर्ग कहते होंगे जीते रहो बेटा, वह जीते रहो इस करके कहेंदे आ तां कि तुसी जिंदगी नू खूब रजमा जा जियो, है ना, तो मज़ा ही आ जाए। पल पल जिंदगी नू जियो, क्योंकि मन दे विच सियाने कहंदे ने एक सैकंड दे विच इन्ने विचार चलते केवल समझ ही नहीं आती। विचार आपस दे विच गुत्थम गुत्था होए होंदे आ तो समझ ही नहीं आती भरा सोचना की ही। तो इस करके जिंदगी दे विच दोस्त बनाने बड़े जरूरी है, क्योंकि वो तुहानू क्लीयर कट चीज़ां दस देंदे, भावें कि उन्हां नू आप दी जिंदगी समझ ना आती होवे पर वो तुहानू सीधे राह पा देंदे आ, है ना। इसे तरीके नाल तुसीं उन्हां नू सीधे राह पा देंदे हो। रब ने खेड ही बड़ी सोहणी जी बनाई, खूबसूरत बनाई हुई है। तो लो जी तुहाडा फेवरेट शो जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। हाय हाय हाय, नाम दे विच कितना प्यार है ना, लव यू जिंदगी। तो लव यू जिंदगी दे विच असी तुहानू इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनावांगे। तो मैं क्या जी स्टोरी तो पहला गाना बजाना हो जाए कि नहीं, क्योंकि गाने साडी जिंदगी दे विच बड़े ही जरूरी ने। जिहड़े लोग गाने नहीं ना सुनते या तो रब नहीं पहुँचे होंगे तो या फिर बेचारे कितने भी नहीं पहुँचे होंगे। तो इस करके कितना कितने पहुँचने वास्ते सानू संगीत का म्यूजिक का या जे तुसी कुछ लिरिक्स भी नहीं सुनते तो इंस्ट्रूमेंटल जरूर सुन लेना चाहिए। इस करके ऑल इंडिया रेडियो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते साडा ये फर्ज है, साडी ये सेवा लगी है कि तुहानू असी टाइम टू टाइम सोहणे सोहणे गीत ते सोहणियां सोहणियां गल्लां बातां सुणाउंदे रहना है। ते असी तुहाडे दोस्त हाँ जी, मित्र हाँ, तो तुसी साडे नाल गल्लां बातां भी शेयर करदे हो ते खूब असी मजे करदे हां, क्योंकि इत्थे गल हुंदी है दिल तों दिल तक। ते लो जी लव यू जिंदगी दे विच असी तुहानू पहला गाना सुनावांगे जी। गुरनाम भुल्लर साहब दा रख ली प्यार नाल, ते वाकई सारे नू प्यार नाल ही रखना चाहिए यार। की फायदा गुस्से गिले करके, ते की फायदा एक दूसरे ते हुक्म चला के, है ना। भी जिहड़ा जो जिदा करदा उहदी मौज है, इदां कहना चाहिए भी भाई मौज है जी तुहाडी, सत वचन जी मौज है। सत वचन च बड़ा सुकून है जी। जिहड़े सियाने ने जिहड़े महापुरश ने उह हमेशा एक चीज़ कहिंदे हुंदे, खास करके बॉयज़ नू, खास करके मेल परसनैलिटीज़ नू, कि भाई अपनियां बीबियां अगे हमेशा सानू सत वचन कह के रहना चाहिदा। ते लो जी गुरनाम भुल्लर साहब सानू की कह रहे ने, रख ली प्यार नाल सुणदे आं जी। ते लो जी स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, वेलकम बैक। मैं जी एफ एम बैंड 102.7 मेगा हर्ट्स से आकाशवाणी जलंधर का ये रेनबो चैनल है। तो तुहाडा साथी, तुहाडा दोस्त, वैसे दोस्त का मतलब हुंदा दो सत, यानी कि दो सत, एक मैं ते एक तुसी। तो वाह क्या बात है, दो सत कट्ठे होए पए ने जो दिल दीआं गल्लां कर रहे ने, ते तुसी दिलों सुन रहे हो। मैनूं पता तुहाडे विचों वी कईआं दा दिल करदा होणा कि यार असीं वी गल्लबात करिए। कोई गल नहीं, कड़ी गल आ, मैं ना तुहाडे वैसे दिल दीआं ते मन दीआं बुझ जाणा होणा कदी कदी। ते दिल दीआं बुझदे आ, मन दीआं बुझदे आ, ते दिलों तो दिल तक गल्लां बातां हुंदीआं ने, ताहीं तां तुसीं सुणदे हो। क्या बात है, क्या बात है, अपने आप दे विच मियां मिठू ही जाना। तो लो जी, कहिंदे ने कि शाम ढलदी है तो सुकून ही आ जाता है। सही गल है, दिन भर का शोर भी चुप हो जाता है, शाम ढलदी है तो सुकून आ जाता है, दिल भर का शोर भी चुप हो जाता है। चाह की खुशबू, आए हाए क्या बात है, चाह की खुशबू तो यार दिया गल्। वैसे कई अजकल चाह नहीं पीते, ग्रीन टी भी पीन लग पे ने, तो कई पानी के अदरक उबाल के भी पीते ने। वैसे घट्टो घट सुन च यह आया, सियाने बंदे कहिंदे ने 250+ तरह दीआं चाहवां हुंदीआं ने, है ना। असीं तां वाहवा ही साल यही सोचते रहे कि खरे आ दुध च पानी पा के पत्ती पा के उही चाह हुंदी आ, पर हौली हौली सानूं भी पता चलिया कि चाहवां 250+ प्रकार दी हुंदीआं। वाहवा, तो लो जी अपने अपने हिसाब की जिहड़ी जिहड़ी जिहड़ी भी तुसीं चाह पीने हो, तो उहनू तुसीं रिलेटेबल कर सकदे हो, ठीक है जी। शाम ढलदी है तां सकून आ जांदा है, दिन भर दा शोर भी चुप हो जांदा है, चाह दी खुशबू ते यारां दीआं गल्लां शाम नूं होर भी सोहणा बना दिंदीआं ने। हर शाम

0: आपके टीम इंटे नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343।
2: सो वेलकम बैक जी। लो जी, तुहाडा फेवरेट शो लैके सी फिर तो हाजिर हां 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जिहदा नाम है जी सारे आपां इकट्ठे दोहराने ठीक है जी लव यू जिंदगी ते जिंदगी जिंदाबाद। ते साडे नाल ना वैसे साथी बैठे हुए ने, पता नहीं बोलणगे कि नहीं बोलणगे नाम है जी मंगल सिंह जी। ते मंगल सिंह जी भी साडे नाल ना गल्लां कर रहे सी, कहिंदे सी कि पवन पानी धरती इन्हां दा सारयां दा सानू सत्कार करना बनता, इवन दैन मत्था टेकना बनता, किड्डी वड्डी गल है, है ना जी। सो इसे तरीके नाल ही असी पॉजिटिविटी नाल भरपूर गल्लां बातें करते रहांगे। ते वेखो जी क्योंकि आपां ना दिलों गल्लां करते हैं इस करके वेखो साडे नाल साडे साथी साडे सीनियर वो भी आके इत्थे सानू आशीर्वाद दे रहे ने। ते नाल दे नाल देखो आपां तुहानू फौजा सिंह जी बारे गलबात कीती ते हुण आपां गलबात करांगे एक नवे साडे जिहड़े खिडारी ने पंजाब दे एक छोटे जिहे पिंड विच इन्हां दा जन्म होया। तो आप गलबात कर रहे हैं गुरिंदर वीर सिंह की प्रेरणात्मक कहानी। अच्छा एक इंट्रस्टिंग गल दसा, इंट्रस्टिंग गल ये है कि मेरे कॉलेज तो ही पढ़े लालपुर खालसा कॉलेज, और जो ये प्रैक्टिस कर आते होंगे सके तो मैनू मिलते होंगे सके, तो साड़ी सत श्री अकाल एक दूसरे नाल रोज़ ही ऑलमोस्ट सांझी होंदी सीगी। तो पंजाब दे जलंधर नेड़े एक छोटे जे पिंड तो निकल के गुरविंदर वीर सिंह ने साबित कर दिता कि वड्डे सुपने देखने लई वड्डे शहरां दी लोड़ ज़्यादा नहीं हुंदी, मेहनत दी लोड़ हुंदी है। उन्हां दे पिता पंजाब पुलिस विच सन, ते इस टाइम मेरे कोल भी पंजाब पुलिस वाले बैठे, ते मैनू बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि इन्हां दीआं भी ड्यूटीज़ बहुत जबरदस्त हुंदीआं ने, और वाकई सैल्यूट आ। ते उन्हां दा सुपना सी कि पुत्तर एक वड्डा एथलीट बने। छोटी उम्र तो ही गुरिंदर वीर सवेरे सवेरे मैदान में दौड़ के प्रैक्टिस करते सन। ये तो मैं भी वेख्या उन्होंने सचमुच, क्योंकि मैं भी उत्थे जाता हूँ अपने उस्ताद जी को थोड़ी बहुत भलवानी सीखण तो ये भी उत्थे पहुँचे होंगे सके। तो पिंड के मैदान सधारण सहूलतों अते कई मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं छड्डिया। शुरू में कई लोग कहते सन कि भारत के दौड़ाक दुनिया नाल मुकाबला कर ही नहीं सकते, पर गुरिंदर वीर ने अपनी मेहनत नाल ये सोच बदलनी शुरू कर दिती। 2026 यानी कि इस साल विच उन्होंने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 10.9 सेकेंड विच पूरी करके नवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिता। बहुत वड्डे प्राउड वाली गल है। वो पहले भारती बने जिन्होंने 10.9 सेकेंड तो यानी कि 9 सेकेंड के आस पास एग्जैक्ट 9 सेकेंड 10.9 सेकेंड ते उन्होंने जिहड़ी दौड़ पूरी की। पर ये कामयाबी एक दिन विच नहीं मिली, एक समा ऐसा भी सी जदों लोग उन्होंने पुराने रिकॉर्ड ते भी शक करते सन कि यार होगा कि नहीं होगा। दबा तना ते उम्मीदां दे बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखी तो दोबारा खुद नूं साबित किया। उन्होंने कहानी सानू सिखाउंदी है कि हालात चाहे किन्ने भी औखे होण सुपने ना छड्डो, मेहनत अते सबर हमेशा रंग लिआउंदा है ते पिंड दी मिट्टी तों वी दुनिया दे रिकॉर्ड बन सकदे ने। ते सब तों वड्डी गल पता की आ, अजकल ना लोग अपने विच पावर लिआउण वास्ते ते ओह बड़े तरह तरह दे ना कैमिकल इनटेक करदे ने, ते उन्हां दा कोई फायदा नहीं। एक वारी इन्हां नूं पुछिआ गया इंटरव्यू दे विच कि तुसीं की ऐसा करदे हो जिहड़े तुहाडे अंदर एनर्जी भरे, ते ओह कहिंदे जी मैं पाठ करदा। देखो किड्डी वड्डी गल है, जिहड़े जिहड़े भी गुरु पीर पैगंबर नूं देवतिआं नूं असीं ध्याउंदे आ ते जदों उस सुप्रीम पावर नूं असीं याद करदे ते सुते सिद्धी साडे अंदर बड़ी जबरदस्त पावर भर जांदी है। सो जिहड़े उसेन बोल्ट ने दुनिया दे सब तो तेज दौड़ाक और उन्हां दी जिहड़ी दौड़ा 9.58 सेकेंड्स यानी कि 10 सेकेंड दे आस पास, ते देखो जी साडा जिहड़ा शेर आ गभरू आ उन्हें 10.9 सेकेंड, माई गॉड, एक सैकेंड का भी कुछ हिस्सा बस थोड़ी जी दूरी पर आ। तो मैनूं लगता वो वेला दूर नहीं जदों उसेन बोल्ट साहब नूं भी ये पिछे छड्ड देंगे, ते असी उन्हां दे भी रिस्पैक्ट करते हैं, पर सानू प्राउड मनना चाहिए। ये माण वाली गल है कि साडे पंजाब दा शेर दुनिया दे विच अपना नाम बना गया। आ थोड़े दिन पहलां दी ही गल है, तो वेखो जी किन्नी पॉजिटिविटी गल वाली गल है। क्योंकि मैं इन्नी पॉजिटिविटी दे नाल तां कह रहा क्योंकि मैं इन्हां नूं लाइव देखिया प्रैक्टिस करदे और वाकई साडे होश उड़ जांदे हुंदे सी कि कमाल दी गल है यार, 2-2 घंटे तां कहिंदे हजे असीं वार्म अप ही होए आ, ते कोई स्टीरॉयड नहीं, कोई ऐसियां गलत चीज़ां नहीं ये स्पोर्ट्समैन साडे जिहड़े लैंदे ने। बिल्कुल इन्हां ने जदों मन विच इरादा धार लिया ना तो बस इन्होंने कहा कि यह मेरा टारगेट है, तो उत्थों तक मैं पहुँचना, तो आलस तो मेरी डिक्शनरी लिखिया ही नहीं है, तो किड्डी वड्डी गल हुंदी है ना। तो लो जी नाल दे नाल असी तुहानू ना इदां दीआं मोटीवेशनल स्टोरीज़ भी सुनाते रहना, तो नाल दे नाल असी तुहानू ना सोहणे सोहणे गाने भी सुनाते रहना। देखो जी फिजिकल एक्टिविटी होनी भी जरूरी है,

मिलेनियल जनरेशन वाई 1981 तो लैके 1996 तक इंटरनेट ते मोबाइल दे समय विच वड्डे हुए। ये लोग जिहड़े इंटरनेट ते मोबाइल दे समय दे विच वड्डे हुए। हालांकि इंडिया दे विच हजे इन्ना नहीं सी आया इंटरनेट ते मोबाइल। हाँ, इहदे नाल नाल आपां एक चीज़ होर भी कह दईए कि साडे जिहड़े डॉक्टर नरेंद्र जी ने, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत की, जिहदे करके पूरे देश दे विच, पूरे देश नहीं ईवन दैन पूरे वर्ल्ड, ईवन दैन कि पूरे वर्ल्ड दे विच ही जिहड़ा इंटरनेट तेज़ जिहड़ा चल रहा उहदे पिछे साडे इंडियन भाई साहब ने, जिन्हां दा नाम है डॉक्टर नरेंद्र सिंह। ते क्रिएटिव सोच वाले सीगे जी, मिलेनियल जनरेशन वाई क्रिएटिव सोच सी अते नवीं चीज़ां नूं पसंद करदे सीगे। उस तो बाद आउंदी जनरेशन जी, जनरेशन जी 1997 तो लैके 2012 तक। ओह, इहदा मतलब मैं मिलेनियल दे विच आना, ओह वाओ। तो ये जिहड़े सीगे जनरेशन जी वाले, ये पूरी तरह डिजिटल पीढ़ी दे विच इन्हां दा जन्म होया। फिर सोशल मीडिया, रील्स, गेमिंग अते स्मार्टफोन नाल जुड़ी हुई ये जनरेशन है। उस तो बाद आती जनरेशन अल्फा। माई गॉड, इनियां जनरेशन 2013 तो लैके 2025

क्या बात है यार दिलजीत, दसांझ साहब, गुरदास मैन साहब, बड़ा ही मज़ा आया। मैनू मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं इन्हों लाइव देखा होया, बड़ा ही मज़ा आता है। एक्चुअल जो लाइव जो होर भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो लो जी दोस्तों, लव यू जिंदगी, असी एक दूसरे नाल वादे किए हैं, तो असं पॉजिटिव होकर जा रहे हैं। तो मेरा तो दिल कंडा तुहानू ना, मैं सौ ही पा देंगे यार, तुम पॉजिटिव होया करो, की नैगेटिव हो जाने जे। चलो कोई गल नहीं, फिर अपने दोस्त नूं दिओ इजाजत, तो हुण भी मैं जाके थोड़ी सैर सूर करा, कसरत करा, तो उस तो बाद मैं क्लास लैनी न्याणियां दी। तो दिओ जी फिर आरजे जोरावर सिंह नूं इजाजत, क्योंकि साढ़े दरम्यान साढ़े सीनियर साढ़े जिहड़े कलाकार आरजे पहुँच चुके हैं, आरजे हरीत सर। तो लो जी स्टे ट्यून, मिलते हैं इस तरीके ना, जिंदगी जिंदाबाद, सारे रल के कहने लव यू जिंदगी, बाय।

नमस्कार, पेश नहीं एफएम न्यूज हेडलाइंस। पंजाब च स्थानक चोणां 2026 लई 103 नगर पालिकावां वास्ते वोटां पाउण दा अमल अमन अमान नाल मुकम्मल होया। शाम 5 बजे तक 61.5% वोटिंग दर्ज की गई। स्थानक सरकारां दी पेश प्रशासकी सकत्तर मनजीत सिंह बराड़ ने कहा है कि मरदमशुमारी 2027 के पहले गेड़ च पंजाब दी प्रशासनिक मशीनरी ने 11 जिलों ते 7 नगर निगमां च शानदार कारगुजारी दिखाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने अज राजस्थान च भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद ते सांचू सरहदी चौक का दौरा किया। सरहदी रक्षा लई एक 4 पदरी ग्रिड बनाउण दी जरूरत ते जोर दिता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग नवी दिल्ली च हुई। मीटिंग च हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी बारे सहमति बनी। फिरोजपुर च काउंटर इंटेलिजेंस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। एक सप्लायर नू असले समेत किया गिरफ्तार। पटियाला जिले च सुरक्षित स्कूल वाहन नीति तहत स्कूली बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाने चैकिंग ते जागरूकता मुहिम चलाई गई। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पश्चिमी राजस्थान ते उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों च लू की स्थिति जारी है। आईपीएल क्रिकेट च अज पहले क्वालीफायर च मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। ਇਹ ਸਨ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ।

107 FM रेनबो ते हरीश हाजर है जी, लैके तुहाडा फेवरेट वाला प्रोग्राम फिल्मी दुनिया और आगाज हो चुका है। और साड़ी इस महफिल दे विच मैं आ चुका तुहाडे नाल तुहाडे कोल, और ये सफर जड़ा उम्मीद है कि बहुत सोहना होएगा। और साडा ये सफर जिसका पहला पड़ाव फिल्मी दुनिया होंदा है, और इस फिल्मी दुनिया दे सफर दे विच बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे गाने और फिल्मी एक्टर्स कलाकारां दी गल हुंदी है। और वैसे दोस्तों फिल्मां दे विच की चीज़ां हुंदियां ने, फिल्मां च एक्टर्स हुंदे, कहानी हुंदी, गाने हुंदे, हीरो हीरोइन हुंदे, विलन हुंदा है, मार ताड़ हो, सब कुछ, एवरीथिंग फिल्म दे विच सब कुछ सानू वेखन नू मिलदा है। और जिहड़ी स्टोरी फिल्म दे विच चल रही हुंदी है, और वो स्टोरी किते ना किते साडी लाइफ नाल रिलेट करती है। मतलब आ सारियां चीज़ां हुंदियां फिल्म दे विच, है ना, म्यूजिक डायरेक्टर हुंदा है जो म्यूजिक बनाउंदा है, सिंगर्स गाना गाउंदे ने, एक्टर्स एक्टिंग करदे ने, और फिल्म डायरेक्टर फिल्म नू डायरेक्ट करदा है। एक होर चीज़ हुंदी है फिल्म दे विच, डिशू भेशू भेशू, हाँ बिल्कुल, फाइट हुंदी है, लड़ाई तड़ाई हुंदी है। और ये लड़ाई झगड़े दे विच, मार कटाई दे विच साडा जड़ा पासा हुंदा है ओ हुंदा है हीरो दे वल। असी चाहुंदे आ कि हीरो दी हीरोगिरी नज़र आवे, और विलन नू कुट कटापा पवे ते ओ हार जावे, और विलन हारन तो बाद जित हीरो दी हुंदी है, और इस तरह हैप्पी एंडिंग हो जाती है फिल्म दी। बट तुहानू पता है कि ये जड़ा डिश

107 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज थोड़े तक पहुंच रही है और शो चल रहा है फिल्मी दुनिया। और फिल्मी दुनिया शो च असी गल कर रहे हैं उना एक्शन डायरेक्टर दी उना स्टंटमैन दी जिन्ना ने अपने स्टंट्स दे नाल हीरोज नू विलन्स नू सुपर हिट बना देता। सिर्फ हीरो हीरोइना नू ही नहीं बल्कि अपने बेटियां नू भी। हाँ जी असी गल की एम बी शेट्टी की, उन्होंने बेटे रोहित शेट्टी अजकल बहुत नामी डायरेक्टर ने। असी गल की वीरू देवगन जी की, उन्होंने बेटे अजय देवगन सुपर स्टार ऑफ द बॉलीवुड। और हुण जिन्हों की मैं गल करन वाला उन्हों का बेटा भी फिल्मों के एक टॉप स्टार है, मतलब सुपर हिट है। और इस वेले उन्होंने बॉलीवुड की ही एक उगी एक्ट्रेस दे नाल, मतलब फेमस सुपर स्टार हीरोइन दे नाल उन्होंने मैरिज की है। शायद तुसी सोच रहे होंगे मैं किदी गल कर रहा, और चलो एक तुहाडे लई आसान कर देना थोड़ा जिहा सवाल कि उन्होंने ताल्लुक पंजाब दे नाल है। हुण तां पता लग गया होगा, चलो मैं खुद ही दस देना, मैं गल कर रहा नन अदर दैन विकी कौशल दी। विकी कौशल अजकल बॉलीवुड दे विच छाए हुए ने और बहुत सारियां उन्हां दी उरी फिल्म की गल करिए या फिर होर भी बहुत सारिया फिल्म जड़िया जिन्हों फिल्मों के उन्होंने शिवाजी राव की कहानी के उत्ते जड़ी फिल्म हमने हाल ही के रिलीज़ हुई, उस फिल्म के उन्होंने करैक्टर बड़ा ही मतलब बहुत लोगों ने प्यार दिता और उन्हों की एक्टिंग सराया। मसान फिल्म के उन्होंने की हुई एक्टिंग कौन भूल सकता है। वो ऐसी फिल्म सी जिस तो उन्होंने बॉलीवुड का राह मिलया और पता लगा लोगों को कि विकी कौशल कमाल का एक्टर है। वो तो एक्टर है ने कमाल के, बट उन्होंने फादर उस तो भी कमाल ने क्योंकि उन्होंने मुंबई के जाके पहला स्ट्रगल किया और फिर उस तो बाद वो एक नामी एक्शन डायरैक्टर बने और बेटे न फिर फिल्मों के मौका मिलया। और इस तरह मतलब कहण का मतलब यह है कि सारा श्रेय जाता उन्होंने फादर आसिफ। हाँ जी बिल्कुल जी, उन्होंने फादर जिन्होंने अपने दमखम से इंडिपेंडेंट सारिया चीज़ा हासिल कीतियाँ। और जदों बेटे नू ज़्यादा मेहनत ना करनी, मतलब मेहनत अल्टीमेटली जदों तुसी किसी फील्ड दे विच जाने हो तां टैलेंट तां तुहाडा ही कम करदा क्योंकि कोई तुहानू राह दिखा सकदा, बट उत्थे तुसी हिट होना या मंजिल नू पाउणा या नहीं पाउणा वो तुहाडा इनर टैलेंट और तुहाडी मेहनत संघर्ष उत्थे कम करदा है। और विकी कौशल दे विच नो डाउट बड़ा कमाल दा टैलेंट है। और उन्हां दे फादर श्याम कौशल जो पंजाब दे विच रहिंदे सी और तुहानू दसदे आ कि हुशियारपुर ज़िला पैंदा उन्हां दा, और उस छोटे जे एरिए तो निकल के मुंबई की धरती ते जाना, घर दे विच मजबूरी की वजह दे नाल जॉब तलाश रहे सी और फ्रेंड दे नाल पहुँच गए मुंबई की धरती ते जॉब तलाश दे उत्थे जाके सेल्समैन की जॉब की, होर भी बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, बट गल नहीं बनी क्योंकि गल तो कितें होर बननी सी। इसलिए दोस्तों ने स्टंटमैन बनने के लिए सुझाया और उन्होंने काम शुरू किया। और नाना पाटेकर की फौजियों वाली फिल्म तो असी सारे ने दूरदर्शन से जरूर वेखी होगी, प्रहार फिल्म। उस फिल्म दे विच पहली बार उन्होंने एज ए एक्शन डायरैक्टर काम करन दा मौका मिलया। हालांकि उन्हों की पहली फिल्म जी रिलीज़ हुई सी एज ए स्टंटमैन वो कोई होर फिल्म सी, उसका नाम सी वो मलयालम फिल्म सी बेसिकली इंद्रजालम उस फिल्म का नाम सी। ये फिल्म उन्हों की पहला रिलीज़ हुई मलयालम फिल्म। और प्रहार फिल्म दे विच जो असी सीन्स वेखते हैं जो ट्रेनिंग वेखते हैं उसका सारा श्रेय श्याम कौशल जी नू जाता है। और इस तो बाद उन्होंने बहुत सारिया होर फिल्मों के भी स्टंटमैन तौर पर काम किया, जैकी श्रॉफ होन, अनिल कपूर होन, अमरीश पुरी होन, गोविंदा, ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, मतलब वड़े वड़े नामी एक्टर्स नू उन्होंने फाइट सीक्वेंसेस करवाए और स्टंटमैन के तौर पर उन्होंने नाल काम किया, एक्शन डायरैक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया और उन्होंने फाइट किवें करनी है सब कुछ सिखाया श्याम कौशल विकी कौशल के फादर ने। होर भी बहुत सारे इदा के

हाँ जी हाँ जी, दंगल दंगल दंगल फिल्म का गाना तो असी इंजॉय किया, और अज असी जो गल कर रहे हैं वह भी कुछ इदा दी है, दंगल दंगल की गल ही हो रही है जो फिल्मों के असी अमूमन वेखते हैं। डिशुम डिशुम जो होंगी है दंगल दंगल ही होंगे जनाब, और इन्हों फाइट सीकुएंसिस के डायरैक्टर्स की गल कर रहे हैं जो फाइटिंग करवाते हैं, डिशुम डिशुम करवाते हैं फिल्मों के, और थोड़ा दस दें कि एक होर इदा का ही शख्स है। तुसी बॉर्डर फिल्म वेखी है और तुसी गदर फिल्म वेखी है, पक्का वेखी होनी है, शोला और शबनम फिल्म वेखी है, राजा हिंदुस्तानी फिल्म वेखी, और एक होर फिल्म जानी दुश्मन फिल्म जड़ी नवी वाली आई सी, और इस तो अलावा मेला फिल्म भी जरूर वेखी होएगी। ये सारिया फिल्म जिस शख्स ने एक्शन डायरेक्टर वजों कीतियां, और कुछ फिल्मों के एज एन हीरो, मतलब हीरो तो नहीं एक्टर काम किया, विलन के तौर पर जरूर उसने काम किया, वो एक नामी एक्शन डायरेक्टर जिन्हों की मैं गल कर रहा, जिन्हों का मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही एक्शन डायरेक्टर का रहा, मैं गल

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने घुसपैठ ते होर कारणा करके जनसंख्यकी तब्दीली दियां चुनौतियां नाल निजिठण लई एक उच्च पदरी कमेटी बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज कहा कि सरकार ड्रोना राही नशीले पदार्थां ते हथियारां दी तस्करी नूं रोकण लई अगले 6 महीनियां दे अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करन दी प्रक्रिया विच है। पंजाब च अज शहरी स्थानक संस्थावां दियां 103 नगर पालिकावां दियां चोणां लई पोलिंग कुछ थावां ते गड़बड़ियां नूं छड्ड के अमन अमान नाल खत्म हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तों सिक्किम दे 3 दिना दौरे ते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अपने अहुदे ते 12 साल पूरे कर ले ने। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE दे भुगतान सिस्टम नूं बेहतर बनाउण लई जनतक खेतर दियां 4 प्रमुख बैंकां दे सीनियर अधिकारियां नाल वेरवे सहित चर्चा कीती। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग नवी दिल्ली च हुई। मीटिंग च हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी बारे सहमति बनी। फिरोजपुर काउंटर इंटेलीजेंस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करदिया एक सप्लायर नूं असले समेत गिरफ्तार किया है।

उतरी ते केंद्रीय इलाके जबरदस्त गर्मी ते लू दी मार हेठ ने। आईपीएल क्रिकेट च अज पहले क्वालीफायर च मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल हो रहा है। एसएनएफएम न्यूज़ हेडलाइंस हुण तों कुछ पलां बाद तुसीं साडा अगला प्रोग्राम एंजॉय करोगे दिल चाहता है।

मूवी क्रोधी, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, ये ट्रैक जड़ा है ये जड़ा ये दिती जा रही है कि कहीं देने आ जड़ी दे रहे हो ना तुसी।

ही जाना है, उन्होंने लिखे है। अगली लाइन जड़ी में बोली कि आजकल जरूरी नहीं सारे झूठ ही बोलते ने, मैं भी झूठ बोल सकदा। फिल्म तीसरी कसम ये फरमाइश मेरे तक पहुंची है तो जरूर पूरी की जाएगी जी। एक होर मैसेज पढ़ते हैं, प्रोग्राम दिल चाहता है पिंड कल्याण मलका जिला बठिंडा तो अमृतपाल सिंह रामगढ़िया परमिंदर सचनूर ते मनिंदर फरमाइश फिल्म यारी अड्ड दी गीत गुड़ नालों इश्क मिठा ये गीत सुना के प्रोग्राम च शामिल करो जी। असी दीवाने एफ एम रेनबो जलंधर के दिल भेजे इन्होंने। थैंक यू सो मच ये मैसेज तुसी मेरे तक पहुँचाया। और तुहानू दस दें कि यारी जट की फिल्म का गाना मैं गुड़ नालों इश्क मिठा पहला तुसी प्रोग्राम सुनिया तो रंगला पंजाब वो मैं ये प्रोग्राम दे विच एक गाना मैं प्ले किया और उम्मीद है तुसी सुनिया होएगा क्योंकि बठिंडे दी गल्लां भी असी उस प्रोग्राम दे विच कीतियां और तुसी बठिंडा शहर तो और बड़े सोहने शहर तो तुसी और एक गाना फिलहाल तुहाडी फरमाइश तो इस प्रोग्राम च पूरी नहीं होएगी बट तुहाडा मैसेज पढ़िया जी। थैंक यू सो मच मेरे तक ये मैसेज पहुँचाउण दे लई अमृतपाल सिंह रामगढ़िया जी। और चलो फिर ये पहली सजन रे झूठ मत बोलो ट्रैक सुनते हैं।

थैंक यू सो मच ये मैसेज मेरे तक पहुँचाउण दे लई ते आज फिर ना मुँह छुपा के जिए ते ना ही सिर चुका के जिए है कि नहीं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ च हमराज फिल्म का ए ब्यूटीफुल ट्रैक।

अच्छा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, माई रेडियो माई लव, दिल से धन्यवाद। गाना तो फिलहाल इस वेले एक ही पूरा हो सकता है जी। मैसेज पढ़ते हैं, एक होर पढ़ते हैं जी मैसेज। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड आरजे जी, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रा, रोजी डिकैस्ट्रा, पर्ल डिकैस्ट्रा, वेलिस डिकैस्ट्रा कहते ने जी। गाने की फरमाइश भी की है सौतन फिल्म का, नाल कह रहे हैं जी आप या हमें किसी भी गीत में शामिल करें, तुसी शामिल हो गए हो जी। थैंक यू सो मच ये मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एस के, पप्पी खुराना, धन्यवाद, ये मैसेज मेरे तक पहुँचे ने जी। फटाफट इस हो नहीं सकता उदित नारायण की आवाज़ ट्रैक प्ले करते हैं, इस प्रोग्राम इतने करते हैं खत्म और वधते हैं अगे।

आगाज हो चुका है शाम में गजल दा, गजल जिस दी अपनी खूबसूरती जिन्नी होंदी है उस तो भी ज़्यादा खूबसूरत वो बयां करती है वो एहसास वो जज्बात वो गल्लां जो असी अपने प्यारे तक पहुँचाना चाहते हैं और इस खूबसूरती दे नाल वो पहुँचाती है कि उस दी खूबसूरती दे विच चार चन्न लग जाते हैं। यही है इस सफ़र का लुत्फ और इस सफ़र से तुहानू मेरे नाल इदा दे खूबसूरत गज़लां तो सुनन मिलनगियां ही नाल नाल खूबसूरत एहसास भी होंगे जो तुहानू अपने एहसास नाल मुलाकात कराते हुए नज़र आएंगे। तुहानू एहसास होएगा उस याद का वो सफ़र का जो तुसी कदे तय किया पर अधूरा रह गया वो सफ़र। आओ मिल के पूरा करते हैं।

तुम कोई कोई लफ्ज नहीं हो जो बस कह दूं और बात खत्म हो जाए। तुम तो वो खामोशी हो जो हर बार दिल में उतर कर मुझे पूरा कर जाती है। तेरे होने से ही मेरे दिन की वजह मिलती है, वरना ये दुनिया तो बस यूं ही गुजर जाती है। तेरी हंसी जैसे मेरी हर थकान का इलाज हो, तेरी आंखें जैसे मेरे हर सवाल का जवाब हो। और सच कहूं, मोहब्बत मैंने तुमसे नहीं की, ना मोहब्बत ने मुझे तुम तक ला दिया। यही है मेरी मोहब्बत।

मैं तुमसे एक दिन कम जीना चाहता हूं। ये मौत की बात नहीं है, उस मोहब्बत की बात है जहां हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होती है। मैं चाहता हूं कि जब बाल सफेद हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, तब भी तुम मुझे वैसे ही देखो जैसे पहली बार देखा था, जब हम पहली बार मिले थे। हम लड़े भी, रूठे भी, पर दिन के आखिर में एक दूसरे के हाथ को थाम कर मुस्कुरा दें। मैं दुआ करता हूं कि हमारी मोहब्बत इतनी लंबी चले कि बच्चों को हंसी आ जाए, और बच्चों की हंसी में, घर की रौनक में और बुढ़ापे की चाय में भी तुम्हारा साथ मेरे साथ बना रहे। क्योंकि आखिर में मोहब्बत वही होती है जहां इंसान सिर्फ प्यार नहीं, अपनी पूरी जिंदगी किसी एक के नाम कर जाता है। और तुम्हारे साथ मुझे वही मोहब्बत है।

मेरा वो दोस्त जो मेरी हर खुशी का कारण है, जो मेरे बिना कहे सब समझ जाता है, जिसके साथ में मैं खुद को सबसे ज्यादा जुड़ा महसूस करता हूं, असली और सुकून में महसूस करता हूं, जो मेरे आंसुओं को भी हंसी में बदल देता है। हमारी बातें, हमारी यादें, हमारी नोकझोंक, हमारी मस्ती, सब कुछ इतना खास कि शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो दोस्त दोस्त नहीं, वो दिल का वो हिस्सा है जो हमेशा साथ रहता है हर हाल में। क्या ये जरूरी है कि उस दोस्त को प्यार का नाम दिया जाए? बताइएगा या दिमाग में दौड़ाइएगा, कोई है ऐसा खास दोस्त जिसे आप अपने दिल की बात कह नहीं पाए, सोचते ही रह गए?

कैसे इसका जिक्र मांगूंगा, वक्त बेवक्त कॉल करने का हक मांगूंगा। बिन बात के मेरे लड़ने पर तुम्हारा सब्र मांगूंगा। अलसाई सोई सी तुम्हारी तस्वीर मांगूंगा। मैं जब भी मांगूंगा तुम्हें, तुमसे थोड़ा और मांगूंगा। और तुम कभी भी मुझसे नजर मत चुराना, बिल्कुल नहीं, वो नहीं सह सकता मैं।

एक प्यार का नगमा है, प्यार का नगमा जो प्यार नाल तुहाडे तक पहुंचेगा और तुहानू उस प्यार दा एहसास जरूर करवाएगा। इस होर भी खूबसूरत हुंदी रात नू खूबसूरत बनाउण दे लई इह साडा रेट्रो सोंग्स दा प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, जिसका आगाज हो रहा जी इस ट्रैक

तुम्हें जाने देना आसान तो नहीं था, पर तुम्हें जाते हुए देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। तुम यूं जा रहे थे जैसे जैसे शाम ढलती है, धीरे धीरे खामोशी में अपना उजाला साथ लिए हुए। मैं यूं ठहरा था जैसे जैसे कोई पेड़ पतझड़ में हर पत्ता गिरते देखे पर उसे रोक ना सके। कुछ रिश्ते भी अजीब होते हैं ना, रास्तों की तरह साथ चलते चलते एक मोड़ पर खो

कभी कभी एक इंसान जिंदगी में आता है और खामोशी से कुछ बदल जाता है। न रास्ते बदलते हैं न मंजिल बदलती है, बस दिल को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर वही दुनिया भी कुछ खूबसूरत सी लगने लगती है।

क्योंकि कुछ लोग मोहब्बत बनकर नहीं आते, वो हौसला बनकर आते हैं और फिर उम्र भर हमारे साथ रह जाते हैं। हमारा हौसला बनकर, हमारा साथ बनकर, है ना।

प्रिय, अब तेरे नाम से भी दिल डर जाता है। जिसे सोचकर कभी सुकून मिला करता था, अब दिल डर जाता है। तू मिला भी ऐसे जैसे बारिश की दुआ, और बिछड़ा भी तो ऐसे जैसे मौसम बदल जाता है। मैंने हर दर्द को चुप रहकर सह लिया, क्योंकि दिल की चीखों को कौन सुना करता है। अब न शिकायत है न किसी से गिला है, बस एक तेरा ख्याल है जो आज भी मुझे रात भर जगा रहा है। मुझे रात भर जगा रहा है आपको भी।

जिंदगी में ना कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, ना मुलाकातें, ना एहसास, ना ही किसी अपने से कहने को बची बातें। हम सब अपने भीतर कुछ अधूरा लिए जी रहे हैं और एक दिन सिर्फ ये खामोशी ही हमारे साथ जाएगी। ये खामोशी महफिलों में भी हम अकेले ही होते हैं, है ना।